0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपका दिल टूटा है, अब आप क्या करोगे? छह महीने रोगे, शराब में अपने गम को डुबाने की कोशिश करोगे? सो बोरिंग यार, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट बंगाली. क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई बंगाली बेस्टी, आपको सिर्फ दाल चावल खाने की जरूरत है. दैट इज ट्रू. आई डिड नॉट से दिस. शी सिंग दाल भात खाबो, एवरी थिंग इट्स ओके. रियली हाउ? लाइक यू टेक दाल भात, पुट इट ऑन योर हार्ट एंड मसल कर उसको, यू फील लाइक हाँ बहुत आराम आ रहा है. आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, बट अपेरेंटली नॉर्मल लोगों की दुनिया एक होती है, फिर बंगाली लोगों की दुनिया apparently जिसमें दाल भात makes everything okay. Now I want to know from you, only if you are Bengali or dating someone who's Bengali, क्या ये सच है? क्या दाल भात में वो सब है which we are just not getting? Alcohol पे so much money we are wasting, instead we should just have mama make दाल भात for us. If that is true, only then hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के spelling है ROCHIE. And can I please tell you कि studio के बाहर my bestie is standing with दाल भात in her hand. What does that even mean? Is she trying to hit on me? While I try and figure that out, तुम कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
4: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
9: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
8: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
10: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आजकल आप टेरेस पर जाकर इसलिए वर्कआउट कर रहे हो ना, ऑनेस्टली, बिकॉज यू थिंक योर नेबर इज सुपर हॉट. और जब आप अपने पिलाटेस करते हो एंड यू आर वर्किंग आउट अ स्वेट, आपका नेबर आपको देखता है एंड दैट माइट जस्ट बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ऑसम. लेकिन ये कन्फेशन आप किसी के साथ मेक नहीं कर रहे हो ना, नाउ इज द टाइम टू चेंज दैट, क्योंकि आ गया है
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: और सीक्रेट बॉक्स का मतलब है दैट अगर आपके पास कोई कन्फेशन है, मुझे उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान और मेरी बहुत ही टूटी फूटी हिंदी. मुझे उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान. मेरे पास अभी लाइन पर मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FP. द नेम इज मिर्ची रोशी, द गेम इज टू लव यू. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय.
1: हाय. आप इतने नर्वस क्यों साउंड कर रहे हो यार? हिंदी मेरी खराब है, नर्वस आप साउंड कर रहे हो. माजरा क्या है?
3: काफी दिन से किसी लड़की से बात नहीं हुई ना, तो आज ऐसा सुन के थोड़ा नर्वस हो गया.
1: काफी दिन से किसी लड़की से बात नहीं हुई. अच्छा, तो आपका ये जो कन्फेशन है वो तो किसी लड़की के बारे में ही है, क्योंकि हम इसे इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर चुके हैं. तो आप मुझे बताओगे कि ये कन्फेशन क्या है?
3: बस यही, मेरा थोड़ा काफी दिन लॉकडाउन से चल रहा था, सब कुछ लॉकडाउन था, कोई कहीं भी जाने का कुछ मन नहीं था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था. तो मैंने सोचा थोड़ा सा नोटी होके देखते हैं, थोड़ी सी चीजों को चेंज करके देखते हैं. बातचीत शुरू हुई किसी से और कुछ ये सब चीजें चल रही थी, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया तो फाइनली द डे केम जहां मैं कुछ नोटी कर सकता हूँ.
1: तो आपको, आपने ये जो लड़की पटाई है ये आपने लॉकडाउन के दौरान पटाई?
3: या
1: ओके फाइन. फिर
3: वेले बैठे क्या करें, यही कर सकते थे तो कर लिया.
1: वेले बैठे थे तो गर्लफ्रेंड ढूंढ ली. अच्छा, बट लेट मी नॉट स्टॉप यू. फिर क्या हुआ?
3: तो बस फाइनली बातें होती गई और द फाइनली डे केम कि मैं कुछ नोटिस कर पाऊं, कुछ बात आगे बढ़ पाए. तो जैसे ही सब कुछ रूम में सब कुछ सेट, माहौल अच्छा था, बातें कर रहे थे, हाथ पकड़ रखा था, सब कुछ चीजें चल रही थी, अचानक से जब सब कुछ होने वाला था तब मेरे को लगा कि कुछ चीज मिसिंग है. मैं फटाफट से लड़की को बोला, मैंने आई थिंक मैंने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया है, मैं चेक करके आता हूँ. एक्चुअली फ्रिज का दरवाजा चेक नहीं करना था, बेसिकली मुझे दही खानी थी चीनी मिला के. क्योंकि मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि कुछ अच्छे काम की शुरुआत मीठे से और दही से होनी चाहिए. तो फाइनली मैं दही खा के आया.
1: Oh God, this is such a cute confession. आप जितने टाइम पर ये कन्फेशन मुझे बता रहे थे, और क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुकी थी इंस्टाग्राम पर, मुझसे मेरी हंसी नहीं रोकी जा रही थी. और फिर दही चीनी खाने के बाद जब फाइनली आपने चरम सुख की प्राप्ति की, तो कैसा लगा आपको? मजे आए?
3: आत्मिक शांति.
1: आत्मिक शांति के बाद मैं आपको एक चरम और, बेसिकली मैं कहने का मतलब है, आई वॉन्ट टू गिव यू अनदर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन. क्या आप रोशिफिकेशन चाहते हैं?
3: ट्राई कर सकते हैं.
1: You've
4: been roshified.
1: इसमें आपको आत्म शांति की प्राप्ति हुई या नहीं?
3: बहुत अच्छे से आत्म शांति की प्राप्ति हुई, और मैं तो बिल्कुल एकदम विलीन हो गया.
1: आप ऐसे ही आत्मशांति में विलीन रहिए. और अगर आपके पास भी है कोई सीक्रेट कन्फेशन ऐसा ही जिसमें आप थोड़े से नोटी हो गए, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab, mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

घड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Just because I'm feeling super emotional today, आपको अपनी एक पर्सनल लव स्टोरी सुनाऊं और उस लव स्टोरी से बेटर मेरी जिंदगी की कोई लव स्टोरी नहीं है. जब मेरी मॉम की शादी हुई तो शी हैड जस्ट फिनिश्ड हर 12th एंड उस जमाने में 12th खत्म करने के बाद इफ़ यू वर मैरिड इन टू अ कंजर्वेटिव फैमिली आप कॉलेज नहीं जा सकते थे एंड मेरी मम्मी का एजुकेशन वहीं ख़त्म हो गया. एक्सेप्ट शी गेव बर्थ टू मी, उसके बाद मैं स्कूल गई एंड आई वॉज द रिबेलियस किड इन द हाउस. और फिर जब मेरे कॉलेज जाने की बारी आई, आई डिसाइडेड कि मैं अकेले कॉलेज नहीं जाऊंगी, मेरे साथ साथ मॉम विल गो टू आर्ट स्कूल. मेरे घर में बहुत बवाल मचा बिकॉज वी वर अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली कि घर की बहुएं पढ़ती नहीं हैं ये वो. बट मैं मॉम एंड आई वर लाइक यू नो व्हाट, जो करना है कर लो, हम तो पढ़ने जा रहे हैं. सो व्हाइल आई वेंट टू कॉलेज, मॉम वेंट टू आर्ट स्कूल. और उसके बाद आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद माई मॉम स्टार्टेड हर ओन आर्ट कंपनी. और आज मेरी मॉम नॉट जस्ट एक बहुत टचवुड सक्सेसफुल आर्ट बिजनेस चलाती है, बट शी इज ऑल्सो अ 2 times नेशनल अवार्ड विनर फॉर द फील्ड ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एंड स्टफ लाइक दैट. एंड ऑनेस्टली व्हेन आई लुक बैक, आई एम गेटिंग सो इमोशनल अबाउट इट. बट आई फील लाइक अगर हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वी डोंट टेक अवे फ्रॉम देम, वी एड टू देयर डिज़ायर्स. अगर उनके कोई सपने जो पूरे नहीं हुए, हम वो सपने पूरे करते हैं, एंड दैट इज़ एन एक्ट ऑफ लव. एंड ऑब्वियसली आई एम सुपर इमोशनल, एंड इफ़ यू हैव अ लव स्टोरी लाइक दैट, then why don't you share it with me on Insta ya FB. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E, and I am proud of this love story. On that note, kahi mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैंने रियलाइज कर लिया है फाइनली आफ्टर इयर्स एंड डेकेड्स ऑफ डेटिंग कि एक ट्रू रिलेशनशिप का क्या मतलब है. एक ट्रू रिलेशनशिप मेरे हिसाब से कश्मीर की तरह होता है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, लेकिन हर वक्त जंग का खतरा लगा रहता है. अगर सच्चा प्यार है तो जंग तो होगी. द क्वेश्चन माय लॉर्ड इज कि इस जंग से आप निकलते कैसे हो. डू यू डू ड्रामा, डू यू अपोलोजाइज क्विकली, डू यू हैव वाउचर्स दैट से प्लीज किस मी एंड फॉरगिव मी. आपका तरीका क्या है ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग राइट नाउ. एंड टेल मी द आंसर टू दैट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE. So go ahead, जाना, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: ओह नो,
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉकस्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ और मैं वो घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हो सकता है इस साल ना हो, उसके बाद वाले साल ना हो, बट द ट्रूथ इज इफ यू हैव मैनिफेस्टेड इट, इट विल हैपन। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी बेस्टी की स्टोरी है, हु हैपन टू से दिस टू हर बॉयफ्रेंड। और क्योंकि बंदे पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, दिमाग से ऑब्वियो, लेकिन लाइक दे आर सो प्रैक्टिकल एंड वियर्ड, तो वो उसको कहता है कि ऐसे तूने सोच लिया और हो गया, घर ऐसे थोड़ी खरीदे जाते हैं। कट टू माय एक्स बॉयफ्रेंड, हम ऐसे उसके घर में थे और एक बम्बलबी अंदर आ गई, तो मैंने उसे कहा कि मारना नहीं है इसे, खिड़की खोल दे और यूनिवर्स को बोल कि इस बम्बलबी को बाहर भेज दे, तो मधुमक्खी अपने आप बाहर चली जाएगी, मारने की जरूरत नहीं। मुझे देख के कहता है तुम लोगों की अच्छी दुनिया है, यहाँ पे ऐसे होती है चीजें, यहाँ पर तो मारेंगे नहीं तो ये खुद हमें काट देगी। एंड आई सेड एक मिनट देना, और मैंने एक्चुअली मैनिफेस्ट किया कि वो बम्बलबी बाहर चली जाए, एंड आई सेड प्लीज बम्बलबी गो आउटसाइड, एंड इट वेंट आउटसाइड। एंड आई एम नॉट किडिंग यू, वुमेन आर ऑल हार्ट, हम जब मैजिक में बिलीव करते हैं तो हम मैजिक देखते हैं। बंदे ऑन दी अदर हैंड ओनली बिलीव इन एरोटिक थ्रिलर्स एंड प्रैक्टिकलिटी, वी आर नॉट इन, सुन लिया, वी आर नॉट इन। और अगर आप हमारा दिमाग बदलना चाहते हो, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, आई विल लिसन टू योर पर्सन। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, सो नाउ गो अहेड, हिट मी अप विद योर स्टूपिड प्रैक्टिकलिटी, और कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: क्या आप और आपके पार्टनर डमशराज खेल खेल के थक गए हैं, फिल्मों के नाम गैस कर कर के थक गए हैं? जैसे मेरा देन बॉयफ्रेंड एंड आई, हमने इतनी बोर्ड गेम्स खेली थी और इतनी लाइक ऐसे वर्बल गेम्स खेली थी डमशराज की तरह, कि एक पॉइंट के बाद ना हम अपनी गेम्स खुद बनाने लग गए थे. और उसमें हमने एक गेम डिवाइस की जिसमें मुझे उसे फिल्म का इनिशियल्स देना होता था और उसे गैस करना होता था कि फिल्म का नाम क्या है. जैसे मैं उसे कहती थी MPDH, तो उसे गैस करना होता था कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ. एंड इफ ही कुडन गैस इट, तो ऑब्वियसली वी यूज टू हैव वेरी नॉटी थिंग्स दैट वी कुड डू एज पनिशमेंट. बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आप भी डमशराज खेलकर थक गए हो एंड यू वांट टू रिप्लेस इट विद समथिंग मोर फन लाइक दिस, जस्ट मेक श्योर दैट द पनिशमेंट इज इवन मोर एक्साइटिंग, ताकि बेचारा अगर फेल हो जाए तब भी उसे लगे दैट ही हैज वन एट द गेम ऑफ लव. और अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए पर्सनली डिलीवर टू योर इनबॉक्स डार्लिंग, देन व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड FB बोथ. एंड व्हाइल यू हिट मी आप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आजकल आप टेरेस पर जाकर इसलिए वर्कआउट कर रहे हो ना, ऑनेस्टली, बिकॉज यू थिंक योर नेबर इज सुपर हॉट. और जब आप अपने पिलाटेस करते हो एंड यू आर वर्किंग आउट अ स्वेट, आपका नेबर आपको देखता है एंड दैट माइट जस्ट बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ऑसम. लेकिन ये कन्फेशन आप किसी के साथ मेक नहीं कर रहे हो ना, नाउ इज द टाइम टू चेंज दैट, क्योंकि आ गया है
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: और सीक्रेट बॉक्स का मतलब है दैट अगर आपके पास कोई कन्फेशन है, मुझे उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान और मेरी बहुत ही टूटी फूटी हिंदी. मुझे उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान. मेरे पास अभी लाइन पर मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FP. द नेम इज मिर्चि रोशी, द गेम इज टू लव यू. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय.
1: आप इतने नर्वस क्यों साउंड कर रहे हो यार? हिंदी मेरी खराब है, नर्वस आप साउंड कर रहे हो. माजरा क्या है?
3: तो काफी दिन से किसी लड़की से बात नहीं हुई ना, तो आज ऐसा सुन के थोड़ा नर्वस हो गया.
1: काफी दिन से किसी लड़की से बात नहीं हुई. अच्छा, तो आपका ये जो कन्फेशन है वो तो किसी लड़की के बारे में ही है, क्योंकि हम इसे इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर चुके हैं. तो आप मुझे बताओगे कि ये कन्फेशन क्या है?
3: बस यही, मेरा थोड़ा काफी दिन लॉकडाउन से चल रहा था, सब कुछ लॉकडाउन था, कोई कहीं भी जाने का कुछ मन नहीं था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था. तो मैंने सोचा थोड़ा सा नोटी होके देखते हैं, थोड़ी सी चीजों को चेंज करके देखते हैं. बातचीत शुरू हुई किसी से और कुछ ये सब चीजें चल रही थी, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया तो फाइनली द डे केम जहां मैं कुछ नोटी कर सकता हूँ.
1: हाँ, तो आपको, आपने ये जो लड़की पटाई है ये आपने लॉकडाउन के दौरान पटाई?
3: या
1: ओके फाइन. फिर
3: वेले बैठे क्या करें, यही कर सकते थे तो कर लिया.
1: वेले बैठे थे तो गर्लफ्रेंड ढूंढ ली. अच्छा, बट लेट मी नॉट स्टॉप यू. फिर क्या हुआ?
3: तो बस फाइनली बातें हुआ.

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मेरे एक्स के बारे में ना मुझे सिर्फ एक चीज, मतलब काफी चीजें थी जो पसंद नहीं थी, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली यूज्ड टू इरिटेट मी इज कि जब भी हम इकट्ठे होते थे वो कुछ ना कुछ चला देता था टीवी पर, एंड ही यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि हम इकट्ठे बैठ के कोई फिल्म देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, कोई सीरीज देखेंगे, बट दैट काइंड ऑफ मेंट दैट हमें एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता था. वी वर ऑलवेज लुकिंग एट अ फिल्म और वी वर लुकिंग एट अदर थिंग्स बट नेवर टॉकिंग टू ईच अदर. एंड जब हमारा ब्रेकअप हुआ ना, आई रियलाइज कि हमारे ब्रेकअप में एक मेजर रोल था उस टीवी स्क्रीन का जो हमेशा हमारे बेडरूम में होती थी. एंड आई गेस जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, एज मच एज नेटफ्लिक्स एंड चिल इज अ थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप डीपली सीमेंटेड हो तो लर्न समथिंग फ्रॉम माई टेरेबल मिस्टेक्स इन द पास्ट. अपने बेडरूम में टीवी कभी मत रखना, बिकॉज अगर ऐसा होता है ना, यू एंड अप वॉचिंग कॉन्टेंट विच इज ग्रेट, बट यू ऑल्सो एंड अप नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, विच इज नेवर ग्रेट फॉर अ रिलेशनशिप. इस नॉन टीवी टाइम को ट्राई करके देखो, एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और जिसके पास

0: Aç Rabbe. Dein Bafe.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

डिलटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यू तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मजा। बाबू मेरा गाना चला दो, बिजवाले बाबू मेरा गाना चला दो, बिजवाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: Radio Mirchi FM, 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनके करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ? भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वहां पर सब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। दिस इज मी श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया, और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। सो यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ। नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए, और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गई। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में 13 ईयर्स में आप कौन सी क्लास में होते हो? आई थिंक 6th या 7th। और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में है ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान। कौन सी हीरोइन थी ये? आहा, इतनी आसानी से नहीं। गाने सुन करके वापस आओ, फिर बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी जो कि तब सिर्फ 13 ईयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तेरा आ।
1: उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी हिंदी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इसी बात पे रेखा जी का एक गाना हो जाए फ्रॉम द फिल्म उमराव जान सुन करके यहीं वापस आ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई थी विलेन के घर पे, यानी अमजद खान जी के घर पे, और उन्होंने एक बिस्किट का ऐड किया जिसकी टैगलाइन पता है क्या थी? अगर ये बिस्किट खाओगे तो गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। इंटरेस्टिंग है ना, ना जय की तरह ना वीरू की तरह, लेकिन गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। ऐसी ढेर सारे किस्से कहानियां हैं उस जमाने के, तुम्हारे साथ शेयर करती जाऊंगी। कहीं भी मत जाना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जाकर के घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था। तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वाज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म्स ही वाज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: Only on Mirchi, it's hot.
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे या फिर श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन सारे हार्टलेस दिलबरों के लिए है जो अपने प्यार करने वाले को ना बहुत तड़पाते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि वो उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें मजा आता है उनको छेड़ने में, उनको तरसाने में, उनको थोड़ा तड़पाने में। ये गाना आज उन्हीं के लिए। श्रेया जाती है, कल मिलने फिर से आती है। इन केस यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, डीएम कर देना। बाय बाय।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मैं खत्म, तो खेल खत्म। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Bubble lusted double cushed, but I'd hit to numb.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ही प्यास है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने। शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो। घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते। ए

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया एसआर मराठे साहब का। वो कहते हैं कि जब बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस को घर वालों को समझाना चाहें लेकिन उनकी बातों को इंटरफेरेंस करना समझा जाए तो फिर क्या करें?
3: इसीलिए जब भी हम कुछ समझाते हैं तो समझाने के बाद डिटैच होना बहुत जरूरी है।
2: हाँ, कि कह दिया और फिर अब देखते हैं वो करना चाहते हैं ना।
3: हमें जब हम परिवार को संभालते हैं ना तो ट्रस्टी बनना चाहिए। गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। ट्रस्टी में ओनरशिप नहीं होता। आप जब देखो, एक है आपने कुछ समझाया और फिर एक्सपेक्टेशन कि आपको ऐसे ही करना चाहिए,
2: सही बात।
3: तो उसमें थोड़ा कंट्रोल भी होता है। तो सामने वाला किसी भी सोल को कंट्रोल नहीं अच्छा लगता।
2: हाँ।
3: तो वो सफोकेट होती है, वो आपसे दूर जाना शुरू कर देती। हाँ। है। आपके अंदर थोड़ा डर भी होता है क्योंकि आपको कई बार वो गलत करते हुए दिख रहे होते हैं।
2: सही बात। हाँ।
3: तो आप अपने अनुभव से समझाने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं समझते तो आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कंट्रोल से कई बार वो आत्मा जो है
2: और
3: दूर हो जाती है, सफोकेट हो जाती है और दूर हो जाती है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप शेयर जरूर करें।
2: जी।
3: अपने विजडम को किसी के साथ शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको डिटैच होना पड़ेगा कि ये उसकी इंडिपेंडेंट जर्नी है। उसके बाद भी अगर वो कोई गलती करता है तो कई बार कहते हैं ना, कई लोग पर जब हाथ जलता है तो ही सीखते हैं।
2: जी।
3: तो कई बार फिर कोई अपनी मिस्टेक से भी सीखता है। सी, एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी एंड दे विल मेक सम मिस्टेक्स एंड दे विल लर्न फ्रॉम देम। ऐसा नहीं सोचे कि हमारे जो अपने हैं वो कोई गलती करे नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका कार्मिक अकाउंट भी है, उनकी जर्नी भी है और कुछ गलतियां उनसे होंगे भी।
2: आपने मुझे ना, मैनेजमेंट के गुरु भी हैं पीटर एफ ट्रकर, उनकी एक बात याद दिला दी। वो कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इज इनसेड। तो जब हाथ जलता है और जब आप आते हैं वापस तो आपको ऑटोमेटिकली वो बात याद आ जाती है।
3: जी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपनों को सपोर्ट करते हुए उनका दर्द अपने ऊपर हावी होने देने से कैसे बचे, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब आप एक ही घर में रह रहे हैं और आपने ये सेम चीज देखी है, आपने सिचुएशन देखी है, आपका एक्सपीरियंस है, और आप सामने वाला आपके पास आया, आप उसको बता रहे हैं भैया ये मत करो, फिर भी वो कर रहे हैं जैसा आपने कहा, वो होते हुए देखना बड़ा तकलीफदायक होता है,
4: क्योंकि आप अटैच है ना।
3: हाँ,
4: इसलिए तो अच्छी है। डिटैचमेंट और अटैचमेंट में क्या है, हम कोई फिजिकल अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात नहीं कर रहे,
3: इमोशनल
4: इमोशनल
3: जी।
4: जब आप इमोशनली किसी से अटैच होते हैं
3: जी,
4: तो वो जब वो हिलते हैं तो आप भी हिलते हैं।
3: हाँ, हाँ।
4: आप इमोशनली अटैच्ड हैं। हाँ। आप क्यों चाहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि आपको डर है कि अगर वो करेंगे
3: तो बुरा होगा,
4: तो कुछ गलत होगा, तो वो दुखी होंगे, तो आप भी दुखी होंगे।
3: हाँ।
4: कभी कभी वो भी इतना दुखी नहीं होते हैं।
3: हाँ।
4: क्योंकि उनको लगता है मैंने किया नहीं होता तो मेरे जीवन में रिग्रेट रह जाता, ये तो मुझे करना ही था,
3: लेकिन हम बात पकड़ के
4: हम बात पकड़ के रखते हैं, हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब क्या है, व्यक्ति से डिटैच नहीं,
3: सिचुएशन।
4: आपने अपना एक्सपीरियंस दिया, फिर आपने उनको फ्रीडम दिया, फिर उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो किया, अगर वो आज दर्द में हैं भी किसी कारण से, लेकिन आप उनके दर्द का इम्पैक्ट आपके ऊपर ना हो, एंड यू आर स्टिल देयर टू हेल्प देम।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर अक्षिता शर्मा हैं, वो लिखती हैं कि पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन फ्रेंड्स और डिस्ट्रैक्शंस बार बार फोकस तोड़ देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं?
3: ये एक एक्सक्यूज है। फ्रेंड्स सबके पास हैं और डिस्ट्रैक्शंस भी सबके पास हैं, लेकिन कमजोर मन उसमें फंस जाता है। इसका मतलब ये नहीं है हम फ्रेंड्स नहीं रखते, लेकिन शक्तिशाली मन क्या कहेगा, ये समय फ्रेंड्स के लिए है, इतना समय घूमने के लिए है, ये समय स्टडी के लिए है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, यू फोकस्ड। लेकिन जब आप कमजोर होते हैं तो कोई जो आपको कहता है, जहां पर आपको लेकर के जाना चाहता है, सो इट इज योर वीक माइंड।
2: बेसिकली अक्षिता शर्मा जी के बारे में साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत साल पहले लिख दिया था, चित्रलेखा नाम की एक फिल्म आई थी, उन्होंने गीत लिखा था उसमें कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिसका मोह करे। तो शी इज गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम कि मेरा मन एक जगह नहीं टिक रहा, तो क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए।
3: मतलब हम क्या करते हैं कि अपने को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहते, तो ब्लेम करना चाहते हैं।
2: तो कौन तुम जिम्मेदार हो?
3: फ्रेंड्स जिम्मेवार हैं। तो सबके जीवन में फ्रेंड्स हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया सबके पास है, नेटफ्लिक्स सबके पास है, दुनिया भर के ऑप्शंस जहां पर हम अपना टाइम रख सकते हैं वो सबके पास है। बट आप अपने को कहते हैं ना, आप अपने मन को समझाते हैं कि अभी मुझे ये
2: करना है
3: करना है।
2: जी,
3: आपने भी अभी देखा होगा जो अभी टेनिस का टूर्नामेंट था, कितना उसमें वो फोकस था, जो ग्रैंड स्लैम का फाइनल था, कि वो जीत भी गए तो उनको पता नहीं चला।
2: पता ही नहीं चला।
3: मैंने तो कोच हैड टू टेल हिम कि आप जीत गए। द फोकस वाज ऑन दैट वन पॉइंट। मैंने ये कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है, पास्ट का पॉइंट में क्या हुआ नहीं पता, आगे क्या होगा नहीं पता, आप उस मोमेंट में है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब आप उस मोमेंट में होते हैं तो कोई बैगेज नहीं है, आप फुल अपना कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ आप वो मोमेंट को जी रहे हैं। जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है, पर आपने तो अपना 100% दिया ना। लेकिन ये है मेंटल टफनेस, कि आप पास्ट को हटाकर, फ्यूचर को हटाकर, वरी को हटाकर, पेन को हटाकर, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, और उस मोमेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं।
2: तो अपने फ्रेंड्स को हटाओ, डिस्ट्रैक्शन कटाओ, इस मोमेंट में फोकस करो, तभी आपका कुछ होगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, पारस जैन का सवाल आया है कि अगर एक रेडियो शो जैसा कि आपका शो आपके मन को शांत करके पूरा दिन पॉजिटिव बना देता है, तो क्या वो भी एक तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग है?
3: स्पिरिचुअल सेवा है। कोई भी प्लेटफॉर्म को अगर हम यूज करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम इस प्रकार का कंटेंट औरों को देते हैं कि वो सुन रहे हैं और उनकी हीलिंग हो रही है।
2: जी,
3: हीलिंग वो कर रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं, और इस सेवा से जो उनकी हीलिंग हो रही है उससे दुआएं मिलती हैं। और दुआएं सबसे बड़ी चीज है जीवन में।
2: बिल्कुल,
3: दुआएं असंभव को संभव करती हैं, दुआएं जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो सेवा भाव से जो भी हम कर सके वो करना चाहिए।
2: क्या बात है, आप अपनी दुआएं हमें भेजते रहिए पारस जैन जी, ताकि हम ये काम और दिनों तक कर पाएं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, SKA नामिक किसी इंसान ने हमें सवाल भेजा है कि सब कुछ पास होने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है, मेडिटेशन के बाद भी पूरी शांति क्यों नहीं मिलती।
3: कई कारण हो सकते हैं। एक, जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ है तो भी शांति नहीं है, तो वो सब कुछ कमाया कैसे है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कई बार।
2: सही तरीके से कमाया या ना ही कमाया,
3: ये जरूरी है, क्योंकि हमने सब कुछ अक्वायर कर लिया, लेकिन जो हम अक्वायर करते हैं उसमें दो ट्रांजैक्शन चलती हैं। एक होती है जो फिजिकल ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देती है, आपने किसी को कुछ दिया, आपने धन कमाया,
2: सही बात।
3: लेकिन एक होती है इमोशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन, कि उसके अंदर आपने अगर हमेशा दूसरे का सुख देखा है तो वो सदा आपको जीवन भर दुआएं मिलेंगी। एक प्रोडक्ट भी है, मैंने कैसे भी करके आपको प्रोडक्ट बेच दिया और मैंने धन कमा लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट सही नहीं था, वो प्रोडक्ट उसके लिए जरूरी नहीं था, मैंने उसको किसी तरह से कन्विंस कर लिया, और बाद में जब वो प्रोडक्ट यूज करता है और उसको रियलाइज होता है कि ही और शी वॉज चीटेड, तो उसके मन के जो थॉट्स हैं, उसके जो वाइब्रेशन है, एक तरह से वो बददुआ होती है। तो कभी भी जीवन में कुछ भी अक्वायर, चाहे वो धन है, पोजीशन है, अवार्ड है, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी के मन को दुख दे करके नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा तरीका जिसमें लोगों को आजकल बड़ा प्राउड लगता है, पर वो तरीका हमारा राइट होना चाहिए। राइट तरीके से अगर आप चीजें अक्वायर करेंगे वो कम होंगी लेकिन सुख देंगी और आपके घर में बरकत लेकर के आएंगी, एक चीज। दूसरा, जो चीजें हमने अक्वायर की हैं, आपको लगता है सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है, हो सकता है आपने सब चीजें बड़े सही तरीके से अक्वायर की हैं और वो चीजें आपको सुख दे रही हैं फिजिकल लेवल पर, लेकिन मन का सुख मिलता है कि आपके चिंतन की धारा क्या है।
2: सही बात।
3: तो मन में अगर आपने कोई पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं, या कोई आने वाले समय की बहुत चिंता है, या कईयों की कमी कमजोरियां देख देख करके आप उसका चिंतन करते रहते हैं, ब्लेम कंप्लेन में रहते हैं, तो भी तो कमजोर मन क्या कर रहा है, गलत सोच रहा है, तो वो चिंता ही क्रिएट करेगा या दुख क्रिएट करेगा। तो फिर अपने मन की चिंता, जो उसका थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज करना जरूरी है।
2: तो वो कह रहे हैं, इसके जो है वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन से भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में उनको क्या कहें?
3: वो कह रहे हैं मेडिटेशन से पूरी शांति नहीं मिल रही है। मेडिटेशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मेडिटेशन शुरू किया और 7 दिन के बाद एकदम आप पीसफुल हो जाएंगे। इनफैक्ट, अगर कोई सही रीति से मेडिटेशन को समझे ना, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव लेयर्स हैं वो सब बाहर आती हैं।
2: अच्छा।
3: आप एक तरह से फर्स्ट टाइम अपने से मुलाकात कर रहे होते हैं। और अंदर में जो देखो, हमारे दुख का जो कारण है, अशांति का जो कारण है, वो हमारे अंदर की कोई ना कोई वीकनेसेस है।
2: जी, बिल्कुल।
3: कमी कमजोरी है, काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप सही रीति से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपने साथ रिश्ता जोड़े हैं, और जब आप अपने साथ रिश्ता जोड़े हैं तो अंदर के ये जो फ्लॉज हैं वो आपको दिखाई देते हैं, रियलाइजेशन। फिर एक यात्रा शुरू होती है हायर बीइंग से अपने अंदर शक्ति भरना और इस एक एक दाग को निकालते जाना। और जितना दाग निकालते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएंगी, शांति और सुख ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा।
2: सही।
3: तो पवित्रता सुख शांति की जननी है, और अगर सुख शांति नहीं है, दुख अशांति है, तो अपवित्रता है, मतलब सम प्रकार की इम्प्योरिटी है, कोई ना कोई वीकनेस है। तो आप जल्दी नहीं करें, मेडिटेशन की जर्नी को एंजॉय करें, ये एक प्रोसेस है, अपने को जाने, अपने को परिवर्तन करें, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस नॉट जस्ट पीस बट ब्लिस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
0: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी ऋचा शर्मा,
1: एंड अक्टूबर 18th, द वॉइस बिहाइंड बारिश एश किंग। Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
3: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
4: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
6: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
7: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
8: Yes, only at Indo American Festival INC, 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
6: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
4: For details, call 732-444-8381 or visit dasara.com.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
13: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, विकास गुप्ता जी ने लिखा है कि जब आप प्रमोशन डिजर्व करते हैं लेकिन मैनेजर बार बार रोक रहा हो तो पेशेंस रखें या एक स्टैंड लें।
3: कोई बात आपको कहनी है, आप असर्टिवली कह सकते हैं
2: जी,
3: लेकिन इस बात पर कंप्लीट फेथ रखें कि जो आपको मिलना है वो मिलना ही है।
2: बिल्कुल,
3: जो कहते हैं टाइमिंग,
2: मतलब
3: आपने बीज बोया है तो उसका फल तो निकलना ही है, तो वो फल निकलेगा ही। तो ये प्रकार का एक रिजेंटमेंट होना कि मुझे तो मिलना चाहिए पर ये मैनेजर रोक रहा है, तो आपके जीवन में जो आना है ना उसको वैसे कोई रोक नहीं सकता।
2: सही बात,
3: उसने आना ही है। वो बोया हुआ बीज का फल, हर बीज का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आना ही है।
2: आप पानी देते रहो,
3: लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा
2: तो
3: है,
2: बात करो।
3: हाँ, लेकिन बात करने का तरीका
2: वो जरूरी है,
3: वो बहुत जरूरी है।
2: और
3: कोई नया बीज ऐसा नहीं बो दो
2: जिसके कारण पुराना बीज भी खराब हो जाए,
3: जिसके कारण वो कॉन्सिक्वेंस भी खराब हो जाए।
2: तो तरीका भी है, और उसके बात करने के बाद शायद कॉन्सिक्वेंसेस आपके फेवर में ना हो, इसका भी आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए।
3: हाँ, देखो कॉन्सिक्वेंस अपने समय पर आता है। एक तो देखो ये चीज का हमें फेथ होना चाहिए, और लौट कर जरूर आएगा, पर अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वो नहीं पता। इसीलिए तो फिर कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। क्यों? क्योंकि जो भेजा है वो तो लौट कर आएगा, लेकिन उसका टाइमिंग किसी को नहीं पता। और इसीलिए फिर हम सब होप के साथ, फेथ के साथ चलते हैं कि अच्छा वक्त आएगा। वो फेथ भी उसी को होता है जिसने अच्छे कर्म किए। अगर आपका कर्म ठीक है और आपको अपने कर्म पर पूरा विश्वास है, तो आपको इस बात पर भी फेथ होता है कि आपकी ये डेस्टिनी चेंज होनी ही है। क्योंकि जो अगर बुरा वक्त चल रहा है तो वो कोई पुराना बीज है।
2: सही बात है,
3: आज का बीज जो आपने बोया है वो तो बिल्कुल ठीक है, और उसका अच्छा फल आपको मिलना भी है। तो जीवन में थोड़ी कंटेंटमेंट होनी चाहिए, थोड़ी संतुष्टता होनी चाहिए, इतनी बिटरनेस लाइफ में नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, कोई चीज आपको गलत लगती है उसको कहना, लेकिन कहने के लिए कहते हैं ना, माना कम्युनिकेशन में भी कई चीजें होती हैं।
2: हाँ।
3: एक है इंटेंशन, किस इंटेंट से आप कह रहे हैं। दूसरा है डिलीवरी,
2: किस तरह से कह रहे हैं,
3: किस तरह से कह रहे हैं। तीसरा है टाइमिंग, वो सुनने की स्थिति में भी है।
2: सही बात, हाँ।
3: बस कह देना तो जरूरी नहीं है ना, सामने वाला वो सुनने की स्थिति में भी है। और चौथा है पर्सन, वो व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल है आपके लिए। तो इंटेंट, डिलीवरी, टाइमिंग एंड पर्सन,
2: वेरी नाइस।
3: चारों को ध्यान में रखकर जो कम्युनिकेट करना है करें, कम्युनिकेट करने में कोई हर्जा नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
8: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
7: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
9: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
13: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
12: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है ये। वो लिखती हैं कि सिस्टर, क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वगैरह वगैरह।
2: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
1: जी,
2: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
1: जी,
2: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
1: हाँ।
2: कह रहे हैं मेरा मन।
1: हाँ।
2: मेरा मन कह, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं।
1: हाँ।
2: तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
1: हाँ।
2: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
1: सही बात है।
2: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
1: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
2: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं। दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जी,
2: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
1: सही बात है।
2: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
1: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो होगा ही।
2: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
1: सही बात है,
2: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी
2: होगी, ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
1: राइट,
2: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
1: सही बात है।
2: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
1: तो चलता रहेगा,
2: वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
1: जी।
2: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, अपनी हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग।
1: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
2: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे
1: हैं। हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है।
2: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
1: मन थका हुआ
2: है। मन थका हुआ है। थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है।
1: सही कह रही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
3: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया सिस्टर श्रेया कि गुड मॉर्निंग विशाल और सिस्टर श्रेया, मैं संजय थाने से बात कर रहा हूँ और मेरे बड़े भाई पिछले 10 सालों से बात नहीं कर रहे। वजह है बंटवारा। उसके चलते हर रोज सुबह मुझे उसके प्रति काफी नकारात्मक विचार आते हैं कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा। मैं इस विचार से बाहर कैसे निकलूं?
2: जब आप ये विचार करें कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा, तो एक्चुअली तो आप सुखी नहीं रह रहे।
1: हाँ, यू हैव टू लेट गो फर्स्ट। सही बात है।
2: बिकॉज़ लुक एट द थॉट, जो आप सोचेंगे वो आप फील करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: अब मैं सुबह सोच रही हूँ वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, उनके साथ गलत हो, ये मैं सोच रही हूँ।
1: सही बात है।
2: ये वो नहीं सोच रहे, ये मैं सोच रही हूँ।
1: हाँ।
2: तो दुखी कौन होगा?
1: मैं।
2: और मैं दुखी होंगी, फिर उसका इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पर पड़ेगा, मेरे काम पर पड़ेगा, मेरी तकदीर के ऊपर पड़ेगा।
1: सही बात।
2: आप उनका नुकसान नहीं करें, पहली चीज तो आप अपना नुकसान करें।
1: क्या बात।
2: फिर आपका जब नुकसान होगा ना, तो हम पता क्या कहेंगे, पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई।
1: उन्हीं की होगी।
2: उन्हीं की होगी।
1: तो ब्लेम भी उन्हीं को करेंगे।
2: पर हम कौन किसको नजर लगा रहा है?
1: अपने आप को, खुद को, की विचार भी मेरे ही हैं।
2: रोज सुबह उठ करके अपने को नजर लगा रहे हैं। तो आपके साथ ही जीवन में कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट थिंकिंग राइट। चलो, हो गया बंटवारा, जो होना तो हो गया, अब हम भी सुखी रहे।
1: हाँ।
2: वो भी सुखी रहे।
1: और द वेरी फैक्ट कि संजय आपने इसके बारे में सोचा और आप इसको बदलना चाहते हैं, आई थिंक आपने पहला कदम ले लिया है और आप आगे भी जरूर सफल।
2: कभी कभी हम बदलना नहीं चाहते, पर वो हमें जैसे कांटा चुभे जा रहा होता है ना।
1: हाँ।
2: अब वो चुभ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसलिए भी ऐसा होता है मैं क्या करूं। पर आप जो कह रहे हैं वो जरूरी है, बदलेंगे नहीं, कांटे को निकालेंगे नहीं
1: तो बदलाव,
2: तो कांटा तो आपको ही चुभ रहा है ना।
1: सही बात।
2: एवरी टाइम वी थिंकिंग नेगेटिवली फॉर समबडी एल्स, वी आर हार्मिंग
1: आवरसेल्व्स। ये समझना जरूरी है।
2: ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू डाई।
1: जी बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. Alarm snooze ho gaya? Coffee mil gayi? Life sorted hai? Nahi. Perfect. Then you're exactly where you need to be. Mirchi Mornings bas abhi shuru hua hai. Mera naam hai Priscilla. Main tumhari morning ki dost hu, believes every problem deserves either a solution or at least a really, really good Mirchi Dar banger. Whether you're driving to work, packing lunch boxes, pretending to work from home, getting your kids ready for school or sitting in traffic wondering, main yahan par kyun aaya? जो कुछ भी कर रहे हो फिलहाल मैं कुछ घंटों तक तुम्हारे साथ रहने वाले हूँ और आज का प्लान काफी सिंपल है. बॉलीवुड की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, फैमिली फ्रेंडली बातें, देसी नॉस्टैल्जिया की बातें, कुछ फ्रेश अपडेट्स एंड इनफ गुड वाइब्स टू मेक योर डे वेरी वेरी मिर्चीदार. एंड हे, डोंट बी अ साइलेंट लिसनर, टॉक टू मी. कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन या फिर कैसे शुरुआत हुई तुम्हारे दिन की? इंस्टाग्राम और एक्स पर फाइंड मी एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड कम से हाई ऑन व्हाट्सएप 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: 9 nights, 1 divine spirit.
7: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
6: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 p.m.
7: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
6: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
15: Listener MI, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: इमेजिन तुम आज से 100 साल पहले उठे हो, क्या हुआ था उस दिन, यही पता करने के लिए ये सेगमेंट है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, एंड आज है अक्टूबर 6 एंड इट्स गॉट सम सीरियस हिस्ट्री अटैच्ड टू इट। बैक इन 1536 इंग्लिश स्कॉलर एंड बाइबल ट्रांसलेटर विलियम टिंडेल वॉज एग्जीक्यूटेड इन बेल्जियम फॉर हियरसे। और आज देखो लोग कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 1927 द जैज सिंगर प्रीमियर्ड इन न्यूयॉर्क, इट बिकेम द फर्स्ट फीचर लेंथ मूवी विद सिंक्रोनाइज्ड डायलॉग एंड हेल्प्ड किक स्टार्ट द एरा ऑफ टॉकीज। Then in 1973, Egypt and Syria launched a surprise attack on Israel on Yom Kippur, beginning what became known as the Yom Kippur War. 1981 mein Egyptian President Anwar Sadat was assassinated during a military parade commemorating the 1973 Suez Crossing. Then we go from Earth to space. 1995 mein astronomers announced 51 Pegasi b, the first confirmed planet discovered orbiting a sun-like star. Matlab ki hum sirf Earth ke guests nahi hai. And फाइनली 2010 में इंस्टाग्राम ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन iOS, और यहाँ से शुरू हुआ फिल्टर्स का सिलसिला। एंड दैट्स आज के दिन की हिस्ट्री। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, slime से लेकर crafts तक, designed for every child's age and theme. साथ में pizza, popcorn और unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए. इससे पहले के price बढ़ जाए, gold bars खरीदे wholesale price पे. Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
16: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने.
17: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
18: अरे कहना क्या चाहते हो?
17: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
9: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
19: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
20: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
19: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
21: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
19: Moral of the story, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Sona kharidne ki soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
8: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
18: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स @1367 Oak Tree Road, Islington, New Jersey।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो तुम। एंड इफ यू आर स्टेपिंग आउट टुडे 6th अक्टूबर को, हियर्स योर वेदर रियलिटी चेक। राइट नाउ इट्स अराउंड 46 डिग्रीज फारेनहाइट, क्लियर स्काइज है एंड दैट नॉर्थ वेस्ट विंड इज मेकिंग इट फील क्लोजर टू 42 डिग्रीज फारेनहाइट। यानी कि थर्मोमीटर रॉस फ्रॉम फ्रेंड्स की तरह कह रहा है आई एम फाइन। एंड गुड न्यूज ये है कि 0% चांस ऑफ रेन टुडे विद क्लियर स्काइज स्टिकिंग अराउंड ऑल डे एंड इनटू द नाइट। आज अम्ब्रेला को छुट्टी दी जा सकती है। टेम्परेचर्स will climb to around 64 degrees Fahrenheit or 18 degrees Celsius this afternoon. But by tonight, we are dropping to around 39 to 41 degrees Fahrenheit. So morning mein ek light jacket apne saath carry karna, evening mein proper sweater ki zarurat pad sakti hai tumhe. Winds will be around 7 to 8 miles per hour and humidity goes from roughly 38% this afternoon to as high as 85% overnight. And yesterday's high was 70 degrees Fahrenheit and today it's only going to touch 64 degrees Fahrenheit. So yes, आज का वेदर इज ऑलरेडी लोअरिंग योर एक्सपेक्टेशंस। बाहर निकलोगे तो SPF 50 प्लस प्लस प्लस लगाकर ही जाना एंड ऑफकोर्स मिर्चीदार वाइब्स बनाकर रखो। प्रिसिला के साथ सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम टू द सेकेंड आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स. मिर्ची आवर का 3 का टाइम है जहां पर 3 अपडेट्स मिलेंगे तुम्हें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले उषा वांस, द यूएस सेकंड लेडी, हैड अ स्कैरी लिटिल मोमेंट व्हाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर एट जॉइंट बेस एंड्रूज. शी ब्रीफली लॉस्ट अ फुटिंग व्हाइल कैरियिंग हर 11 वीक ओल्ड सन एलेक इन अ कैरियर, बट ग्रैब द रेलिंग एंड क्विकली रीगेन्ड हर बैलेंस. थैंकफुली बोथ वर ओके. वीडियो ऑल्सो शोज पीपल नियर बाय नॉट इमीडिएटली स्टेपिंग इन. नंबर 2 पर FBI डायरेक्टर कैश पटेल इज एंगेज्ड. हिज फियांसे कंट्री सिंगर अलेक्सिस विल्किंस इज 27 एंड पटेल इज 46. And she announced it with the line, went and got the law involved. All right, that caption deserves its own wedding invitation. And lastly, cricket lovers, Pakistan champions have withdrawn from the World Championship of Legends after the Pakistan Cricket Board did not issue the required NOCs. Reports say there was also disagreement over conditions involving last year's India-Pakistan episode and handshakes. The scheduled India-Pakistan match on October 10th is therefore ऑफ. अगला मिर्ची आवर का 3 आएगा अगले घंटे में. अभी फिलहाल जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Pepe Mirchi. Escaba la puscabana, sacabana. ¡Gabana! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga! हेलो
2: दे देना यार मेरे पैसे 10,000 रुपए तूने बहुत
3: टाइम यार ऐसे कैसे दे दूं मैं अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब
3: आप एक सेकंड होल्ड करो ना मैं आपसे बात करूंगा कितने कह रहा है
2: 5 दे दे भाई
3: 5 पक्की बात है 5 लौटाएगा
2: मैं 5 लौटाऊंगा
3: भाई साहब इसने क्या कही है अभी
1: 5,000 लौटाऊंगा
3: 5,000 लौटाऊंगा ठीक है पक्की बात है ये
2: पक्की बात है पक्की बात है
3: देखो मुझसे गोली मत दियो फोन मत कर पहले बता रहा हूं
2: नहीं करूंगा
1: अरे मुझे क्या फोन किया ये
3: अरे मैं आपको बता रहा हूं एक सेकंड रुको देख 5,000 पूरे दे रहा हूं मैं कब तक दे देगा
2: 20 दिन बाद ले लियो चल पैसे
3: भाई साहब कितने दिन कह रहा है ये
1: 20 दिन बोल रहा है
3: 20 दिन कह रहा है ना तू
2: 20 दिन
3: कह रहा है
1: अरे तो मैं क्या करूं
3: भाई साहब जरूरी तो आपसे बात करनी है ये तो बीच में आ गया एक सेकंड होल्ड करो ये ले ये 10 के हैं 500 गिन ले एक बार गिन
2: ठीक है पूरे 10 नोट दिए
3: भाई साहब कितने नोट दिए हैं इसे
1: 10
3: नोट दिए हैं फोन मत नहीं करेगा तू
2: फोन मत नहीं करूंगा यार
3: पक्की बात है
2: ना 20 में पक्का वापस ले
3: फोन मत करियो
2: यार नियत थोड़ी खराब है मेरी
3: तो तू कर भी नहीं सकता सुन ले क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह है
2: हां तो वो तो है ही
3: भाई साहब आप गवाह हो ना आप गवाह हो
2: मेरी नियत में
1: कोई गवाह
3: नहीं नहीं बात सुनो अगर तूने पैसे ना दिए ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे ये गवाह है
1: खुद कह रहे हैं हेलो
3: हाँ फोन बंद कर दिया उसने पैसे निकालो अब तुम
1: अरे मैं क्यों निकालू जान ना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो
3: तुमने कहा नहीं क्या
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो गवाह तुमने खुद कहा 10 नोट दिए
1: खा के थोड़ी दिए
3: ओ हेलो 5,000 पूरे निकलवा लूंगा बता रहा हूँ मैं
1: अरे मैं कहाँ से निकालू तूने मेरे को पैसे
3: अरे तो जबरदस्ती मत करियो गवाह क्यों बना था तूने कहा 10 नोट दिए
1: हाँ तो मैंने तो बताया था तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो तो मैं तो बताऊंगा ना
3: उसका तो फोन बन जा रहा तू देगा बता रहा हूँ
1: हेलो
2: अरे भैया
1: कौन
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे अरे वो पैसे मांगे ना देना मत तुम उसको बिल्कुल भी
1: पैसे मैं क्यों दूंगा तुम दोगे तुमने लिए
2: नहीं नहीं गवाह तो आप है ना देने तो आपके बनते हैं वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का
2: सारी बात ठीक है पर गवाह क्यों बने बीच में आप
1: पागल वागल हो क्या हेलो
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं तू गवाह बना था
1: अबे जो दूसरे फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं मैंने थोड़ी पैसे लिए तेरे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है
8: अरे माँ अभी भेजता हूँ टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में
7: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट
9: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
11: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
12: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
12: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे
19: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
19: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
19: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन
20: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
21: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती
20: हैं। क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9039 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
22: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
23: तेरा क्या होगा कालिया?
24: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
23: अब मिर्ची खा।
25: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: नवरात्रि में ना 9 दिन गरबा करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन 9 दिन में 9 गोल्ड चेन्स जीतने का चांस देने वाला सिर्फ मिर्ची है। अब जल्दी बताओ, ये खेलना है कि नहीं खेलना है? क्योंकि मैं बोले तो प्रिसिला आ चुकी हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। इस नवरात्रि वीरानी जूलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार। मतलब कि सिंपल है, 9 नवरात्रि नाइट्स होंगी, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होंगी, हर दिन जीत सकते हैं लकी विनर्स ढेर सारी प्रेशियस गोल्ड चेन्स। अब अगर तुम सोच रहे हो प्रिसिला ये मुझे भी चाहिए, तो अरे ऑब्वियसली यार, गोल्ड है बॉस। पार्टिसिपेट करने के लिए फटाफट से अपना व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो नवरात्र एंड उसे भेज दो 9033647244 पर, यानी कि 9033 मिर्ची पर। प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। और अगर तुम ओकट्री रोड के आसपास रहते हो, नहीं भी रहते हो, तो वहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे, चेकआउट करो जाकर। 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर अमेजिंग ऑफर्स चल रहे, फेस्टिवल इज राइट अराउंड द कॉर्नर। विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com पर फटाफट से। और हाँ, मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम अपने आंसर्स मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। मिर्ची प्रिज इंस्टाग्राम पर MIRCHIPRIS इज माई हैंडल, उस पर टाइप करके भेजो नवरात्रि अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID
11: 2108069।
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
15: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एनर्जी मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं तो थक गई भाई साहब, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, अब तुम सुनने वाले हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at 4290, 4290 डॉलर पर ट्राई के साथ गोल्ड के प्राइजेस आज ट्रेड कर रहे हैं। आइए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें और 0% इंटरेस्ट पे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें ज्वेलरी अप्रूव होने पे आज घर आपके साथ जा सकती है और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी इंटरेस्ट के आप पे कर सकते हैं। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Teen updates from around the world. Sunne ka time aa chuka hai Mirchi Mornings, but this is Priscilla with you.
0: Mirchi Hour ka 3.
1: Number 1 par France se disturbing update aa rahi hai. Lens mein student protests ke dauran ek 15-year-old student ne reportedly ek police grenade utha liya. Apparently use wapas throw karne ki koshish mein aur wo uske haath mein hi explode ho gaya. He lost his hand. Police and protesters ke beech clashes ke baad investigations underway hai. And this one is a very heartbreaking collateral damage. Number 2 par Nepal se heartbreaking flood update. August 26th ki devastating flash floods ke baad Nepal ne एक्टिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वाइंड डाउन कर दिया है. 1,455 पीपल डाइड एंड 5,285 लोग अभी भी मिसिंग है, इंक्लूडिंग नियरली 190 इंडियंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स. अब फोकस सर्च से रिहेबिलिटेशन और रीबिल्डिंग पर शिफ्ट हो रहा है. एंड लास्टली इंडियन क्रिकेट में एक इमोशनल चैप्टर क्लोज हुआ है. हरमनप्रीत कौर हैज स्टेप डाउन एज कैप्टन ऑफ इंडियाज वुमेन्स टीम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. शी लेड इंडिया इन 211 मैचेस एंड मोस्ट memorably lifted India's first Women's World Cup title in 2025. Captaincy khatm hui hai, lekin Harmanpreet ka cricket journey abhi baki hai. And that's your Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Connected raho mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp ka number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La birba, la burka. Milci, burka.
1: हेलो, मैं कौन से विकास बात कर रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
2: विकास, हाय विकास, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया सर।
2: अच्छा विकास, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अपना प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे डाल ही दिया था, मैंने कस्टमर केयर आपके कॉम पे इसलिए फोन किया, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीमियम सर्विस है आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ना बिल्कुल सीरियस हूँ शादी के लिए।
1: जी सर, सर आपकी बिल्कुल पूरी सहायता होगी। सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप किस तरह की लड़की?
2: देखिए जनरली होता तो यह है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, आजाद ख्याल की होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए लड़की की जहां तक बात है ना, मैं चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि बहुत बोले ना लड़की, मतलब ज्यादा ना बोले लड़की, मतलब खामोशी। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ज्यादा जब बोलते हैं ना आदमी तो ऐसे लगता है यार वही अपनी सुनाई जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई ऐसी लड़की कहां देखें जो कम बोलती हो, और फर्स्ट मुलाकात में तो अंदाजा भी नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो आप इस बात का बहुत ध्यान देना।
1: कम बोलने
2: हमारी फैमिली में भी ये है कि जैसे पापा है वो भी बहुत कम बोलते हैं, मम्मी है बहुत कम बोलती है, उन्होंने भी ये कहा, देखिए छोटी बात पे इतना असर डाल दो कि वो दूर तक जाए, बजाय इसके कि आप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, असर किसी बात का हो नहीं रहा। मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा शक्ल से, शक्ल भगवान की बताई हुई होती है, ऐसी कोई शक्ल में बात नहीं होती, हमारी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है, और बाकी मैं सैलरी का जितनी मेहनत करो इतनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन ये आप थोड़े से देख लीजिए कि थोड़ा सा कम बोलती हुई लड़की हो। इसमें मैं बोल भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए अब मुझे बड़ा अजीब लगता है यार आदमी पे पे पे पे पे बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा, दूसरों को मौका दे नहीं रहा, कभी कभी उसको अंदाजा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर लड़की देखें ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि आप उससे बात करके, आप बात करके फोन पे अंदाजा हो सकता है ना, कई लोगों से जैसे फोन पे बात करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कितना बोल रहा है कितना नहीं बोल रहा, तो उससे अंदाजा। तो हाँ आप फिर देखिए मैं आपको बताता हूं, बोलने से ये भी होता है एनर्जी कितनी निकल रही है आदमी की, अब आप अपनी एनर्जी बोलने में निकालो, कहीं और पे निकालो, किसी दूसरे काम में निकालो, देश की प्रगति में निकालो, बच्चों को पढ़ाई में निकालो, आप बोल बोल बोल बोल बोल के दिमाग फाड़ रहे हो आप दूसरे का। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एक काम करिए, दो चार लड़के देखिए। क्या हुआ सर? ओके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
6: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
7: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
13: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
12: Wait, they can see us on Sunday?
13: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
14: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
15: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
14: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
16: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
17: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
18: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
18: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
19: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
20: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
21: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
20: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: आज स्टार्स क्या बोल रहे हैं पता करने का टाइम आ चुका है. वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: इनीज यानी कि मेष राशि, आज थोड़ा सा बॉस मोड ऑन कर लो यार. बट पहले अपना पर्सनल स्पेस और पेंडिंग काम जो है उसे सॉर्ट कर लो. न्यू प्रोजेक्ट्स के पीछे भागने से पहले पुराने का हिसाब क्लियर करो. एंड रिमेम्बर, क्लीन रूम इज इक्वल टू क्लीन माइंड. लकी कलर इज रस्ट ऑरेंज. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, समवन इंपॉर्टेंट मे वॉन्ट टू रिकनेक्ट और फाइनली टॉक अबाउट सम अनफिनिश्ड बिजनेस. सो लिसन, डोंट इंटरप्ट एंड प्लीज आई टोल्ड यू सो को थोड़ी देर के लिए अपने बैक पॉकेट में रख लो. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि, वर्क में कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन का गेम थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा. सेम स्ट्रेटजी सेम रिजल्ट, नोप. पॉज, रीथिंक एंड ट्राई अ न्यू एंगल. समटाइम्स प्रॉब्लम नहीं अप्रोच को अपडेट करना पड़ता है. लकी कलर इज कोबाल्ट ब्लू. लकी नंबर इज 21. कैंसर यानी खरक राशि, रिकग्निशन इज कमिंग योर वे. कॉम्प्लीमेंट मिले तो एक्सेप्ट करो. अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया बोल के अपनी अचीवमेंट को डिस्काउंट मत दे दो यार. बस प्रेज के साथ फैक्ट्स भी वेरीफाई कर लेना. लकी कलर इज येलो. लकी नंबर इज 9. लियो यानी कि सिंह राशि, मून एंड जुपिटर आर गिविंग यू फुल स्पॉटलाइट एनर्जी. कॉन्फिडेंस हाई है, करिश्मा हायर है. बस कोई नई ऑफर आए तो एक्साइटमेंट में फाइन प्रिंट को बाद में देखेंगे मत बोल देना. एंड ट्रैक दैट स्पेंडिंग. लकी कलर इज मेरी गोल्ड येलो. लकी नंबर इज 3. वर्गो यानी कन्या राशि, स्ट्रक्चर इज योर सुपर पावर टुडे. ओल्ड लेसन्स का यूज करो. प्लान्स चेंज हो तो पैनिक नहीं अडेप्ट करना. And property या financial decisions, slow and steady, okay? Universe is saying Excel sheet first, emotional decision later. Lucky color is plum purple, lucky number is 18. And that was your first 6 राशियों का राशि जोन. बाकी की 6 राशियां लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स. एंड ऑफ कोर्स गो एंड चेक आउट माई socials. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
8: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी रिचा शर्मा,
7: एंड अक्टूबर 18th, द वॉइस बिहाइंड बारिश एश किंग। Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
9: नवरात एकत स्पिरिट
10: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
9: रमो गरबा डेली 11-19 ઓક્ટોબર સાંજે 7 કલાક થી
10: તારીખ 18મી ના રોજ 8મ યજ્ઞ 19મી એ 9મ યજ્ઞ અને 25મી એ શરદ પૂર્ણિમા ગરબા ને મિસ ના કરતા તો ફેમિલી સાથે જોડાઓ અને અનુભવ ડિવિનિટી વિઝિટ gayatricenter.org ટુડે
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
13: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
14: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
15: Yes, only at Indo American Festival INC, 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
13: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
14: For details, call 732-444-8381 or visit dasara.com.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
18: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएल।
19: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
20: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
19: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए your 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
21: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
22: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
23: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
22: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
24: Ise apni jeb mein rakh le Peter, ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
22: Moral of the story, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 7323666777।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hisley.
11: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, before I disappear like your weekend after Sunday night, एक लास्ट फिल्मी धमाका देकर जाना बनता है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप. आज का शो खत्म हो चुका है लेकिन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का मिर्च मसाला नेवर एंडिंग है डार्लिंग. द जेलर 2 ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन मंडे एंड द इंटरनेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग व्हाट द इंटरनेट डज बेस्ट, प्रेडिक्टिंग अ ब्लॉकबस्टर बिफोर द पॉपकॉर्न हैज एवर बीन ऑर्डर्ड. फैंस आर लविंग द ट्रेलर विद सम कॉलिंग इट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ट्रेलर कट्स एंड इवन प्रेडिक्टिंग it could become one of the biggest Tamil hits. And then there's the fun speculation, could Hrithik Roshan make an appearance in the movie? Up whether that cameo happens or not, Rajinikanth sir is back and the swag is intact. And clearly, the internet has already booked its first day, first show seats. And with that, mera sign off karne ka time aa chuka hai. You go and check out Jailer 2 ka trailer aur mujhe batao kaisa laga tumko, tumhare kya views hai iske bare mein. Mera handle name hai Mirchi Pris, Instagram aur X par, and WhatsApp ka number hai 9033647244. Thank you so much for hanging out with me on Mirchi Mornings. Drive safe, work smarter, pretend to work if your boss is watching you right now, and keep that Mirchi Desi स्पिरिट लाउड. अभी के लिए टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए हैव फन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: कभी कभी किसी कैरेक्टर की दुनिया में एंटर करने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना एनफ नहीं होता।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आपको उसकी दुनिया को जीना पड़ता है एंड बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं इन आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो ऐसा कर पाते हैं। वन ऑफ देम बीइंग रसिका दुग्गल। और उनके करियर को देखें तो शायद उनकी जर्नी इसी डिफरेंस को ब्यूटीफुली डिफाइन करती है। किस्सा जैसी फिल्म से लेकर मंटो, दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर तक उन्होंने बार बार ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। खुद रसिका ने भी कहा है कि मंटो ने उन्हें एक डिफिकल्ट करियर फेज से बाहर निकाला और मिर्जापुर एंड दिल्ली क्राइम ने उन्हें एक वक्त में ही कम्प्लीटली डिफरेंट शेड्स एक्सप्लोर करने का मौका दिया। और अब उनकी अपकमिंग फिल्म लिटिल थॉमस के लिए उनकी प्रेप के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो जेसी मिरांडा नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, हु इज डीपली कनेक्टेड विद म्यूजिक, जिसके लिए रसिका ने बजाबते पियानो क्लासेस लिए हैं, नॉट फॉर अ डे और अ वीक बट 4 महीनों के लिए, जहां उन्होंने मोजार्ट, शूमन और चौपैन की कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस की प्रैक्टिस की। और क्योंकि उसी वक्त वो एक हॉरर शो की शूटिंग भी कर रही थी तो उस शूट पे वो अपना पोर्टेबल कीबोर्ड साथ लेकर जाती थी और टेक्स के बीच में प्रैक्टिस किया करती थी। और शायद यही रसिका के करियर की सबसे इंटरेस्टिंग थ्रेड है। रोल छोटा हो या आइकॉनिक, कैरेक्टर फेमिलियर हो या बिल्कुल अनफेमिलियर, वो उसके अंदर घुसने के लिए कुछ नया सीखने को रेडी रहती हैं। और शायद इसीलिए उनके कैरेक्टर स्क्रीन पर एक्टेड नहीं, लिव्ड इन फील होते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: दे देना यार मेरे पैसे, 10,000 रुपए तूने बहुत।
3: अरे यार ऐसे कैसे दे दूं मैं? अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब,
3: भाई साहब आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा। कितने कह रहा है?
2: 5 दे दे भाई।
3: 5 पक्की बात है? 5 लौट आएगा?
2: मैं 5 लौटाऊंगा
3: भाई साहब। इसने क्या कही है अभी?
1: 5,000 लौटाऊंगा।
3: 5,000 लौटाऊंगा, ठीक है? पक्की बात है?
2: पक्की बात है, पक्की बात है।
3: देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत कर, पहले बता रहा हूं।
2: नहीं नहीं करूंगा।
1: अरे मुझे क्या फोन किया?
3: अरे मैं आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, एक सेकंड को। देख 5,000 पूरे दे रहा हूं मैं, कब तक दे देगा?
2: 20 दिन बाद ले लियो। चल
3: भाई साहब, कितने दिन कह रहा है?
1: 20 दिन बोल रहा है।
3: 20 दिन कह रहा है ना तू?
2: 20 दिन बाद।
3: 20 दिन कह रहा है?
1: अरे तो मैं क्या करूं
3: भाई साहब? जरूरी तो आपसे बात करनी है, ये तो बीच में आ गया। एक सेकंड होल्ड करो, ये ले, ये 10 के हैं, 500 गिन ले एक बार, गिन।
2: ठीक है,
3: ठीक है,
2: 10 नोट दिए
3: भाई साहब। कितने नोट दिए इसे?
1: 10
3: नोट दिए। फोन मत नहीं करेगा तू?
2: फोन मत नहीं करूंगा,
3: पक्की बात है ना?
2: 20 दिन पक्का वापस ले।
3: फोन मत मत करियो
2: यार, नीयत थोड़ी खराब है मेरी यार।
3: तो तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह है।
2: हाँ तो वो तो है ही
3: भाई साहब, आप गवाह हो ना, आप गवाह हो।
2: मेरी नीयत में कोई
1: गवाह
3: नहीं। नहीं बात सुनो, अगर तूने पैसे ना दिए, ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे है, ये गवाह है,
1: खुद कह रहे हैं। हेलो।
3: हाँ फोन बंद कर दिया उसने, पैसे निकालो अब तुम।
1: अरे मैं क्यों निकालू? जानना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो?
3: तुमने कहा नहीं क्या?
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो, गवाह। तुमने खुद कहा 10 नोट दिए,
1: खा के थोड़ी दी है।
3: ओ हेलो, 5,000 पूरे निकलवा लूंगा, बता रहा हूँ मैं।
1: अरे मैं कहाँ से निकालू? तूने मेरे को पैसे दिए क्या?
3: जबरदस्ती मत करियो, गवाह क्यों बना था? तूने कहा 10 नोट दिए।
1: हाँ तो मैंने तो बताया था, तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो, मैं तो बताऊंगा ना।
3: उसका तो फोन बन जा रहा, तू देगा बता रहा हूँ।
1: हेलो।
2: अरे भैया
1: कौन?
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे। अरे वो पैसे मांगेगा ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी।
1: पैसे मैं क्यों दूंगा? तुम दोगे, तुमने लिए?
2: नहीं नहीं, गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं। वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का।
2: यार सारी बात ठीक है, फिर गवाह क्यों बने बीच में आप?
1: पागल वागल हो क्या? हेलो।
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं, तू गवाह बना था।
1: अबे तो उसने फोन ऑन कर लिया, उससे बात करना है यार, तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहा है? मैंने थोड़ी पैसे लिए तेरे।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Inefficient,
12: very complex,
13: clumsy or
14: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएल।
16: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
17: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
18: Tera kya hoga kalya?
19: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
18: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi. It's hot.

0: कुछ गानों की अपनी ही किस्मत होती है। हम दिल दे चुके सनम, नहीं नहीं इस गाने की नहीं, बट इस फिल्म की जरूर से बात कर रही हूँ, जो रिलीज हुई थी 1999 में, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। और इस फिल्म का ये एपिक ट्रैक तो डेफिनेटली याद होगा आपको।
1: तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार।
0: सो ये गाना ना इस मूवी के लिए फाइनलाइज नहीं हुआ था। यस, बेसिकली लिरिसिस्ट महबूब ने ये कहानी सुनाई एक इंटरव्यू में, और उन्होंने बताया कि भाई वो और म्यूजिशियन इस्माइल दरबार साथ में कई गाने क्रिएट करके अपने बैंक में डाल दिया करते थे, एंड तड़प तड़प के वाज वन सच सॉन्ग जो फाइनलाइज हुआ था फॉर अ मूवी नेम्ड दस। इसको डायरेक्ट करने वाले थे लेट मुकुल आनंद जी, बट अनफॉर्चुनेटली 1997 में ही पास्ड अवे एंड द मूवी गॉट शेल्व्ड, जिसके बाद संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एल्बम का डिस्कशन कर रहे थे, तब इस्माइल दरबार और महबूब का ये गाना उन्होंने सुना, जो उन्हें इतना पसंद आ गया दैट उन्होंने इन दोनों ही आर्टिस्ट को अपनी इस फिल्म के एल्बम के लिए फाइनलाइज कर लिया। तभी मैंने कहा कुछ गाने अपनी अलग ही किस्मत लेकर आते हैं, और बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखने जाते हैं उसके पीछे ऐसी ही कई छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest-running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। यार बाबू मोशाय, आप कहाँ ही जा रहे हो? नॉटी नॉटी, चलिए दिमाग को वापस लाइए, क्योंकि यहाँ इस गेम में लगाना है ना दिमाग। सो बेसिकली द ड्रिल इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजिए, ताकि कॉल करके मैं आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है जूलिया। तो जूली जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे?
3: अभी तो हम ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे हैं।
0: अरे वाह, हम आप क्या पटना बिहार झारखंड
3: पटना
0: अरे रे, हम लोग तो एक ही शहर के निकले जी। तो क्या गेम शुरू करने के लिए तैयार हैं आप?
3: हाँ, हम तैयार हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई की बारिश में हीरो टेलीफोन बूथ पे पापा से बात कर रहा है और सामने दिखती है हीरोइन बच्चों के साथ बारिश में मस्ती करती हुई।
3: दिया मिर्जा।
0: ओह, कौन सी फिल्म है, नाम बताइए।
3: रहना है तेरे दिल में।
0: क्या बात है। तो रहना है तेरे दिल में, रीना से उसका नकली फियांसे बनके कौन मिलता है?
3: माधवन।
0: आर माधवन लड़कियों का वशीकरण किस फिल्म में करते हैं?
3: शैतान।
0: बहुत बढ़िया। शैतान में ज्योतिका के हस्बैंड कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो सरदार जी बने हैं?
3: सन ऑफ सरदार।
0: सन ऑफ सरदार में संजय दत्त की बहन कौन है?
3: संजय दत्त की बहन ये है सोनाक्षी सिन्हा।
0: सोनाक्षी सिन्हा को थप्पड़ से डर किस फिल्म में नहीं लगता?
3: दबंग।
0: दबंग में रॉबिन हुड पांडे कौन है?
3: सलमान खान।
0: क्या बात। सलमान खान दीवाना बनके अपनी ओ ओ जाने जाना को किस फिल्म में ढूंढते हैं?
3: प्यार किया तो डरे।
0: ओह लड़की एकदम फिल्मी कीड़ा जाग रहा है। प्यार किया तो डरना क्या में अरबाज खान की बहन कौन है?
3: काजोल।
0: काजोल को अपने बेस्टी से किस फिल्म में प्यार होता है?
3: कुछ कुछ होता है।
0: कुछ कुछ होता है में अंजलि के पापा कौन है, मतलब छोटी वाली अंजलि?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान 6 दिन में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
3: बादशाह।
0: आ आ आ आ आ, यहाँ आप गलत हो गई। आपने जो इस गेम में गर्दा उड़ाया है, जो ताबड़तोड़ आपने फिल्मचीपना दिखाया है, मजा ही आ गया बहुत।
3: मेरे को भी आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है।
0: जूलिया
3: I love you.
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई हमारी इस बिहारी बाला ने तो गजब का समा बांध दिया, जिसके लिए इनको ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: और अगर फिलहाल आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी जाग रहा है, तो जगाइए जगाइए और मिर्ची श्रुति से इंस्टा पे जरूर मिलिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
5: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
6: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at my3usa.org.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: देखो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट मैं मिर्ची फिल्म की गेम की बात कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत आज हमने की थी जूली मैम से। बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है रानू। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप और कहाँ से बात हो रही है?
3: हैदराबाद से।
2: ओ वाओ, तो रानू हमारा गेम जहाँ अटका था, क्या उसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहोगे?
3: यस यस प्लीज गो अहेड।
2: ऑलराइट, सो द क्वेश्चन दैट शी गॉट स्टक ऑन वाज, शाहरुख खान 6 दिनों में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
3: कल होना हो
2: में नैना का मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है?
3: सैफ अली खान
2: एक पैशनेट म्यूजिशियन ट्रेन पे कस्तो मजा है ले लईबा किस फिल्म में करते हैं?
3: परिणीता
2: में बचपन से सैफ अली खान से किसको प्यार है?
3: विद्या बालन
2: को जिंदगी में एंटरटेनमेंट किस फिल्म में पसंद है?
3: डर्टी पिक्चर
2: में प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है?
3: इमरान हाशमी।
2: यस, इमरान हाशमी की किस गैंगस्टर फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है?
3: आवारापन।
2: यस, और ये जो पूरी फैमिली ने मिलकर साथ में गेम खेला है एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, आई रियली लाइक इट।
3: थैंक यू। एक्चुअली हम लोग सारे एक ही रूम में हैं, माय डॉटर इज जस्ट 6 इयर्स ओल्ड।
2: ओके,
3: शी इज प्रॉम्प्टिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग, शी इज प्रॉम्प्टिंग।
2: ओह,
3: एंड टुडे इज आवर 8th एनिवर्सरी, दैट इज व्हाई माय हस्बैंड इज जस्ट नियर मी।
2: ओह माय गॉड, दैट इज सो स्वीट। विश यू बोथ अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी।
3: Thank you so much.
2: It was so lovely talking to you, ma'am. And of course, the way you have ended the game is amazing. तो इसी बात पे आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
2: तो बाबू मोशाय, अगर आज का ये मिर्ची फिल्म गेम आपसे मिस हो गया, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे जाके अपना नंबर DM कीजिए, एंड रेस्ट आई टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।

0: इन फिल्मों में हीरोइंस को बचाया नहीं जाता, दे फाइट बैक एंड राइट देयर ओन स्टोरी।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना गिने चुनी ही ऐसी फिल्में हैं, और इसलिए मैंने सोचा आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात करूं जहां वुमेन एक्चुअली टुक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड फॉट बैक। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट सिस्टम मिडनाइट, नंबर दो पे NH10, नंबर तीन पे मॉम, नंबर चार पे बुलबुल एंड नंबर पांच पे नो वन किल्ड जेसिका। तो शुरू करते हैं करण खंडारी डायरेक्टोरियल सिस्टम मिडनाइट से, जो 2024 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग राधिका आप्टे एज उमा, जो एक अनकन्वेंशनल वुमन है हु रिफ्यूजेस टू फिट इनटू द मोल्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउसवाइफ। देखो, हमें भी पता है कि शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर जरूरी नहीं कि हैप्पी ही हो। एंड सिस्टम मिडनाइट में राधिका आप्टे की उमा एक अरेंज्ड मैरिज में फंस जाती है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल सबमिसिव वाइफ बनने को रेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी और क्वर्की स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये फिल्म एक वुमन के रिबेलियन, फ्रस्ट्रेशन और फ्रीडम की सर्च को एक्सप्लोर करती है। ऑल्दो हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोगों को इस मूवी की स्टोरी टेलिंग समझ में ही नहीं आ पाए, बट लेट मी टेल यू, इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था 2024 के कैंस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस इंटेंसिटी की मूवी है ये। तो अगर आप एक मर्द हैं और अपने अंदर के फेमिनिज्म को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं, देन डू वॉच द मूवी। बाकी की चार फिल्मों की डिस्कशन सबसे कुछ ही देर में होगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो, मैं कौन से विकास बात कर रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
3: विकास, हाय विकास, कैसे हैं आप?
2: एकदम बढ़िया सर।
3: अच्छा विकास, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अपना प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे डाल ही दिया था, मैंने कस्टमर केयर आपके कॉम पे इसलिए फोन किया, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीमियम सर्विस है आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ना बिल्कुल सीरियस हूँ शादी के लिए।
2: जी सर, सर आपकी बिल्कुल पूरी सहायता होगी। सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप किस तरह की लड़की?
3: देखिए जनरली होता तो यह है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, आजाद ख्याल की होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए लड़की की जहां तक बात है ना, मैं चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि बहुत बहुत बोले ना लड़की, मतलब ज्यादा ना बोले लड़की, मतलब खामोशी। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ज्यादा जब बोलते हैं ना आदमी तो ऐसा लगता है यार वही अपनी सुनाई जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई ऐसी लड़की कहाँ देखे जो कम बोलती हो, और फर्स्ट मुलाकात में तो अंदाजा भी नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एक बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो आप इस बात का बहुत ध्यान देना। हमारी फैमिली में भी ये है कि जैसे पापा है वो भी बहुत कम बोलते हैं, मम्मी है बहुत कम बोलती है, इन्होंने भी ये कहा, देखिए छोटी बात पे इतना असर डाल दो कि वो दूर तक जाए, बजाय इसके कि आप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, असर किसी बात का हो नहीं रहा। मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा शक्ल से, शक्ल भगवान की बताई भी होती है, ऐसी कोई शक्ल में बात नहीं होती, हमारी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है, और बाकी मैं सैलरी का जितनी मेहनत करो इतनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन ये आप थोड़े से देख लीजिए कि थोड़ा सा कम बोलती हुई लड़की हो। इसमें मैं बोल भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए अब मुझे बड़ा अजीब लगता है यार आदमी बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा, दूसरों को मौका दे नहीं रहा, कभी कभी उसको अंदाजा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर लड़की देखे ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि आप उससे बात करके, आप बात करके फोन पे अंदाजा हो सकता है ना, कई लोगों से जैसे फोन पे बात करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कितना बोल रहा है कितना नहीं बोल रहा, तो उससे अंदाजा। तो हाँ आप फिर देखिए मैं आपको बताता हूं, बोलने से ये भी होता है एनर्जी कितनी निकल रही है आदमी की, अबे आप अपनी एनर्जी बोलने में निकालो, कहीं और पे निकालो, किसी दूसरे काम में निकालो, देश की प्रगति पे निकालो, बच्चों को पढ़ाई में निकालो, आप बोल बोल बोल बोल बोल के दिमाग फाड़ रहे हो आप दूसरे का। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एक काम करिए, दो चार लड़के देखिए। क्या हुआ सर? ओके
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
8: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
13: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
12: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
16: Inefficient, very complex,
17: clumsy or
16: confusion ही confusion.
15: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
18: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
0: कहना है चुराएं।
17: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
18: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
17: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
19: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानी ज्वेलर्स.com।

0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारी हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम इग्नाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बनके रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उद्यावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Honey, it's 11 PM, our bedtime. Where are you?
3: I am not going to bed with you ever again.
2: But why? What did I do?
3: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
2: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
3: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
2: Yes, come soon. Honey!
3: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
4: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: ओह नो,
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: जब एक औरत के साथ इनजस्टिस हो तो उसको क्या करना चाहिए?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल ये गॉथिक पीरियड हॉरर फिल्म आई, स्टारिंग तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी एंड राहुल बोस एज लीड्स। सेट इन द 1880s बंगाल, बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड एक ओप्रेसिव वर्ल्ड में ग्रो करती है और इवेंचुअली अपनी एजेंसी और पावर रिक्लेम करती है। वैसे फिल्म की डायरेक्टर साहिबा ने इसको एक फेमिनिस्ट फेरी टेल भी कहा था, जहां सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू एक औरत के पेन और रेश को एक्सप्लोर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल, वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानी ज्वेलर्स.com।

0: हिंदी सिनेमा की पहली बैट कॉम
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। पैटकॉम का मतलब होता है पेट्रियोटिक कॉमेडी, और हिंदी सिनेमा की तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि कोई पेट्रियोटिक कॉमेडी आ रही है। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज उड़ता तीर बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज योर एंड भाई साहब क्या ही बवाल ट्रेलर काटा है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आकाश कौशिक, इस फिल्म की स्टारकास्ट एक अलग ही वाइब है। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, मुकुल देव, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, सुहेल नायर, ब्रिजेंद्र काला, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनको आपने इनके क्राफ्ट के लिए कई बार अप्रिशिएट किया होगा। एंड कहानी का बैकड्रॉप अगर आपको बताऊं तो भाई, एक पाकिस्तानी स्पाई है जो एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इंडिया भेजा जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी याददाश्त ही चली जाती है और वो बन जाता है भारत का अल्टीमेट लेवल देशभक्त। और इस चक्कर में जो ह्यूमन क्राई क्रिएट होता है, जो सिचुएशनल कॉमेडी आती है, वो आपको ट्रेलर में जब इस लेवल पे गुदगुदा रही है, हंसा रही है, देन आई एम 110% श्योर कि 9th ऑफ अक्टूबर को जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो बवाल ही काट डालेगी। बाकी आपके क्या ओवरव्यूज हैं अबाउट दिस पैट कॉमेडी, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: दे देना यार मेरे पैसे 10,000 रुपए तूने बहुत
3: टाइम यार ऐसे कैसे दे दूं मैं अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब
3: आप एक सेकंड होल्ड करो ना मैं आपसे बात करूंगा कितने कह रहा है
2: 5 दे दे भाई
3: 5 पक्की बात है 5 लौटाएगा
2: मैं 5 लौटाऊंगा
3: भाई साहब इसने क्या कही है अभी
1: 5,000 लौटाऊंगा
3: 5,000 लौटाऊंगा ठीक है पक्की बात है ये
2: पक्की बात है
3: देखो मुझसे गोली मत दियो फोन मत कर पहले बता रहा हूँ
2: नहीं करूंगा
1: अरे मुझे क्या फोन किया ये
3: अरे मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड को देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं कब तक दे देगा
2: 20 दिन बाद ले लियो चल पैसे
3: भाई साहब कितने दिन कह रहा है
1: 20 दिन बोल रहा है
3: 20 दिन कह रहा है ना तू
2: 20 दिन
3: कह रहा है
1: अरे तो मैं क्या करूँ
3: भाई साहब जरूरी तो आपसे बात करनी है ये तो बीच में आ गया एक सेकंड होल्ड करो ये ले ये 10-10 के हैं 500 गिन ले एक बार गिन
2: ठीक है पूरे 10 नोट दिए
3: भाई साहब कितने नोट दिए हैं इसे
1: 10 नोट
3: दिए हैं फोन मत नहीं करेगा तू
2: फोन मत नहीं करूंगा
3: पक्की बात है ना
2: पक्का वापस ले
3: फोन मत करियो
2: यार नियत थोड़ी खराब है मेरी
3: तो तू कर भी नहीं सकता सुन ले क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह है
2: हाँ तो वो तो है ही
3: भाई साहब आप गवाह हो ना आप गवाह हो
2: मेरी नियत में
1: कोई गवाह
3: नहीं नहीं बात सुनो अगर तूने पैसे ना दिए ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे ये गवाह है
1: खुद कह रहे हैं हेलो
3: हाँ फोन बंद कर दिया उसने पैसे निकालो अब तुम
1: अरे मैं क्यों निकालू जान ना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो
3: तुमने कहा नहीं क्या
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो गवाह तुमने खुद कहा 10 नोट दिए
1: खा के थोड़ी दिए
3: ओ हेलो 5,000 पूरे निकलवा लूंगा बता रहा हूँ मैं
1: अरे मैं कहाँ से निकालू तूने मेरे को पैसे
3: अरे तो जबरदस्ती मत करियो गवाह क्यों बना था तूने कहा 10 नोट दिए
1: हाँ तो मैंने तो बताया था तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो तो मैं तो बताऊंगा ना
3: उसका तो फोन बन जा रहा है तू देगा बता रहा हूँ
1: हेलो
2: अरे भैया
1: कौन
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे अरे वो पैसे मांगे ना देना मत तुम उसको बिल्कुल भी
1: पैसे मैं क्यों दूंगा तुम दोगे तुमने लिए
2: नहीं गवाह तो आप है ना देने तो आपके बनते हैं वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का
2: सारी बात ठीक है पर गवाह क्यों बने बीच में आप
1: पागल वागल हो क्या हेलो
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं तू गवाह बना था
1: अबे जो दूसरे फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं मैंने थोड़ी पैसे लिए तेरे
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार
7: वो तो होगी ही और तामझाम भी होगी दुगना
8: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey 1 PM to 8 PM
6: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more
5: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस इट्स 2 AM हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे व्हाट डू वी डू
10: डोंट वरी आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग
9: वेट दे कैन सी अस ऑन संडे
10: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंड areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: चुराने का जरूरत नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव special offers on 22 karat gold and diamond jewelry visit viranijewelers.com
14: tera kya hoga kalia
15: sardar maine aapka namak khaya sardar
14: ab mirchi kha
16: radio mirchi it's hot
0: aap sun rahe hain purani jeans श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: ए हेलो, नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
7: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
8: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
7: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
8: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
7: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
14: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने।
15: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाई वीरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
4: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
5: October 24th and 25th, हमर होल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट my3usa.org।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम, साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल
9: 7323970057।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
12: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le Peter, ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
12: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai, ek hi hota hai. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
15: आई आई आई आई आई आई

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहां के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे, इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा, जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई, तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है, तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो, मैं कौन से विकास बात कर रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: विकास, हाय विकास, कैसे हैं आप?
3: एकदम बढ़िया सर।
4: अच्छा विकास, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अपना प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे डाल ही दिया था, मैंने कस्टमर केयर आपके कॉम पे इसलिए फोन किया, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीमियम सर्विस है आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ना बिल्कुल सीरियस हूँ शादी के लिए।
3: जी सर, जी सर, आपकी बिल्कुल पूरी सहायता होगी। सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप किस तरह की लड़की?
4: देखिए जनरली होता तो यह है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, आजाद ख्याल की होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए लड़की की जहां तक बात है ना, मैं चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि बहुत बोले ना लड़की, मतलब ज्यादा ना बोले लड़की, मतलब खामोशी। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ज्यादा जब बोलते हैं ना आदमी तो ऐसा लगता है यार वही अपनी सुनाई जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई ऐसी लड़की कहाँ देखे जो कम बोलती हो, और फर्स्ट मुलाकात में तो अंदाजा भी नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एक बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो आप इस बात का बहुत ध्यान देना। हमारी फैमिली में भी ये है कि जैसे पापा है वो भी बहुत कम बोलते हैं, मम्मी है बहुत कम बोलती है, इन्होंने भी ये कहा, देखिए छोटी बात पे इतना असर डाल दो कि वो दूर तक जाए, बजाय इसके कि आप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, असर किसी बात का हो नहीं रहा। मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा शक्ल से, शक्ल भगवान की बताई भी होती है, ऐसी कोई शक्ल में बात नहीं होती, हमारी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है, और बाकी मैं सैलरी का जितनी मेहनत करो इतनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन ये आप थोड़े से देख लीजिए कि थोड़ा सा कम बोलती हुई लड़की हो। इसमें मैं बोल भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए अब मुझे बड़ा अजीब लगता है यार आदमी बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा, दूसरों को मौका दे नहीं रहा, कभी कभी उसको अंदाजा

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
12: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
13: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
11: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
9: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
14: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
15: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
14: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
16: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जीन्स पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बस वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
5: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
4: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
5: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
4: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
5: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: नवरात एक स्पिरिट
8: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
7: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांजे 7 कलाक थी।
8: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथ जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: ओह नो!
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें, बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: या इज दैट विशाल?
4: जी
5: विशाल, आई एम मूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड।
4: जी सर,
5: आपका फर्स्ट राउंड तो हो गया था, आप उस दिन 4 बजे तक रुके थे ऑफिस, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया था आपसे। बाय द वे विशाल, आप नेक्स्ट मंथ तो ज्वाइन करने में कंफर्टेबल है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल सर।
5: अक्टूबर मिड में अगर मैं बोलूं तो।
4: जी।
5: अच्छा विशाल, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड आपका हुआ उन्होंने काफी इम्प्रेस थे आपसे, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ यू हायर यू, आप 5 साल के बाद, मान के चलिए आपने आज ज्वाइन कर ली कंपनी, 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आपको?
4: सर मैं 5 साल बाद इतनी मतलब कड़ी मेहनत करूंगा आपकी कंपनी में कि मैं आगे जाके खुद ही कंपनी खड़ी कर सकूं।
5: आर वी फूल, आप यहाँ पे आए और लाइक आप ऐसे सोचिए ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं और आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आप उससे पूछे 5 साल के बाद क्या करोगे, और वो कहे कि 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ के अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान हो।
4: नहीं सर, सर मैं आपके साथ, सर मैं 10 साल तक काम करूंगा आपके साथ, जी जान लगा दूंगा सर, और 10 साल तक आप ही के साथ काम करूंगा सर मैं।
5: अगेन अभी फूल, मतलब 10 साल तक आपके ग्रोथ ही नहीं कर रहे, आप पड़े में नहीं, आप खुद सोचिए, आपने कंपनी खड़ी करी, आपने को हायर किया, आपने उम्मीदें करी कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय है, आपको लगता है ये सही विजन है?
4: सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर,
5: मेरे साथ काम करना चाहते हैं?
4: जी सर, आपकी कंपनी में तरक्की करना चाहता हूँ, जितनी ग्रोथ है आपकी कंपनी में, कहीं नहीं जाऊंगा सर आपको छोड़ के।
5: बिल्कुल पक्का?
4: बिल्कुल सर, पक्की बात है।
5: देख लीजिए
4: जी,
5: 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं।
4: हाँ सर बिल्कुल, जितनी ग्रोथ होगी सर आपकी कंपनी में होगी, आपकी कंपनी में जी जान लगा के कड़ी शिद्दत से मेहनत से दिल से कंपनी की हम ग्रोथ में अपना योगदान,
5: कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देंगे।
4: जी सर
5: ठीक है, यू आर हायर्ड। विशाल भाई, आप जो आपका नंबर दिया था, पर यार विशाल तुम कितने प्यारे हो यार, तुम कितने मासूम हो। सो नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, टेल मी नाउ।
4: सर मैं फाड़ दूंगा सर, 5 साल बाद अपनी कंपनी बनाऊंगा मैं।
5: यस
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: gold prices are rising, invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels, buy gold bars now at Raj Jewels.
9: It's 2 a.m. her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
10: Don't worry, I'm contacting 7 days pediatrics, they will answer the call and guide us. Now we will be able to see them in the morning.
9: Wait, they can see us on Sunday?
10: We are open 7 days a week including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting, start booking online at 7dayspediatrics.com. visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर,
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल से पहले इसके गाने भी बन गए थे पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन कमाल साहब की

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
6: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
5: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
6: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
5: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
6: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: Nine nights, one divine spirit.
9: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
8: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
9: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
8: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: Listener mein, back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूं श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
8: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio.

की टाइम। दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, ना आपकी मिर्ची सिद्धि। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहां कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: दे देना यार मेरे पैसे, 10,000 रुपए तूने बहुत
3: टाइम। यार ऐसे कैसे दे दूं मैं? अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब
3: आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा। कितने कह रहा है?
2: 5 दे दे भाई।
3: 5 पक्की बात है? 5 लौटाएगा?
2: मैं 5 लौटाऊंगा
3: भाई साहब। इसने क्या कही है अभी?
1: 5,000 लौटाऊंगा।
3: 5,000 लौटाऊंगा, ठीक है? पक्की बात है?
2: पक्की बात है, पक्की बात है।
3: देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत मत कर, पहले बता रहा हूँ।
2: नहीं नहीं करूंगा।
1: अरे मुझे क्या फोन किया यार?
3: अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड को। देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं, कब तक दे देगा?
2: 20 दिन बाद ले लियो। चल पैसे
3: भाई साहब। कितने दिन कह रहा है?
1: 20 दिन बोल रहा है।
3: 20 दिन कह रहा है ना तू?
2: 20 दिन बाद।
3: 20 दिन कह रहा है।
1: अरे तो मैं क्या करूँ
3: भाई साहब? जरूरी तो आपसे बात करनी है, ये तो बीच में आ गया। एक सेकंड होल्ड करो। ये ले, ये 10 के हैं, 500 गिन ले एक बार, गिन।
2: ठीक है, पूरे 10 नोट दिए
3: भाई साहब। कितने नोट दिए हैं इसे?
1: 10
3: नोट दिए हैं। फोन मत नहीं करेगा तू?
2: फोन मत नहीं करूंगा।
3: पक्की बात है ना?
2: पक्का वापस ले।
3: फोन मत मत करियो
2: यार, नीयत थोड़ी खराब है मेरी।
3: अब तो तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं ये गवाह हैं।
2: हाँ तो वो तो है ही
3: भाई साहब। आप गवाह हो ना? आप गवाह हो?
2: मेरी नीयत में
1: कोई गवाह
3: नहीं। नहीं बात सुनो, अगर तूने पैसे ना दिए, ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे है, ये गवाह है,
1: खुद कह रहे हैं। हेलो।
3: हाँ फोन बंद कर दिया उसने, पैसे निकालो अब तुम।
1: अरे मैं क्यों निकालू? जान ना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो?
3: तुमने कहा नहीं क्या?
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो? गवाह तुमने खुद कहा 10 नोट दिए। हेलो, 5,000 पूरे निकलवा लूंगा बता रहा हूँ मैं।
1: अरे मैं कहाँ से निकालू? तूने मेरे को पैसे दिए क्या?
3: जबरदस्ती मत करियो, गवाह क्यों बना था? तूने कहा 10 नोट दिए।
1: हाँ तो मैंने तो बताया था, तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो, मैं तो बताऊंगा ना।
3: उसका तो फोन बन जा रहा, तू देगा बता रहा हूँ।
1: हेलो।
2: अरे भैया
1: कौन?
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे। अरे वो पैसे मांगेगा ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी।
1: पैसे मैं क्यों दूंगा? तुम दोगे? तुमने लिए?
2: नहीं नहीं, गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं। वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का।
2: सारी बात ठीक है, पर गवाह क्यों बने बीच में आप?
1: पागल वागल हो क्या? हेलो।
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं, तू गवाह बना था।
1: अबे जो उसने फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार, तू मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहा है? मैंने तेरे थोड़ी पैसे लिए तेरे।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
17: नौ नौ लखा वाला हार। कहना है चुराएं।
18: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
19: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
18: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
20: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
21: तेरा क्या होगा कालिया?
22: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
21: अब मिर्ची खा।
23: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
24: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
25: यार बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: उसे झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
12: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
15: 2108069।
16: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
17: अरे कहना क्या चाहते हो?
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
18: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
19: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है, और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: This is the tribute to Talaiwa from King Khan and one and only
2: Yo Yo Honey Singer.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
3: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
8: अरे कहना क्या चाहते हो,
7: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
15: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
14: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
16: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
18: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
19: नवरात्रि की पिक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी है, आउटफिट फाइनल, डांडिया रेडी, प्लेलिस्ट रेडी, लेकिन मिर्ची की पिक्चर में अभी गोल्डन ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस नवरात्रि फेस्टिव में वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते करते लकी विनर्स के पास चांस है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन नवरात्रि के हर रात में। तो बस अब हीरो वाली एंट्री आपको खुद लेनी पड़ेगी, जाएगी। व्हाट्सएप कीजिए हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप कीजिए नवरात्रि और रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @rjmirchisiddhi siddhi। आपको बस टाइप करना है नवरात्रि और इस अनोखे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है जहां आप जीत सकते हो प्रेशियस गोल्ड चेन। और पिक्चर में ज्वेलरी डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो विरानी ज्वेलर्स ओकट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फेस्टिव स्पेशल ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस्टिव लुक के लिए जो ज्वेलरी दिल को पसंद है वो आप चूज कीजिए और जो गोल्ड चेन किस्मत में आए वो मिर्ची से जीतिए। मोर डिटेल्स @viranijewelers.com और जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे इंस्टा के डीएम कर दीजिए। और अब पिक्चर रेडी हो तो बैकग्राउंड स्कोर भी तो चाहिए यार, तो डांडिया उठाओ वॉल्यूम बढ़ाओ और शाम शानदार में अगला बॉलीवुड बीट पकड़ो ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: और झुमका रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स

फॉल इज फाइनली फॉलिंग दोस्तों, शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, न्यू जर्सी में फाइनली फॉल आ रहा है। वो हवा में हल्का हल्का क्रिस्प फीलिंग, सुबह का थोड़ा कूल टेम्परेचर और ट्रीज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। एंड सडनली इवनिंग ड्राइव भी थोड़ी सिनेमेटिक लगने लगी है। क्योंकि मुझे ना फॉल की सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि सीजन आपको फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए, बस एनवायरमेंट खुद ही थोड़ा और ब्यूटिफुल हो जाता है। कॉफी थोड़ी और बेटर लगने लगती है, वॉक थोड़ी और लॉन्गर हो जाती है, हुडी फाइनली जस्टिफाई होती है, और रोड ट्रिप के बिना भी ट्रीज देखकर लगता है कि यार सीन तो सेट हो चुका है। मतलब मन बिल्कुल ऐसा करता है कि तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। तो बताइए, आपके लिए परफेक्ट फॉल मोमेंट क्या है? चाय, लॉन्ग ड्राइव, वॉक, पंपकिन स्पाइस, या बस घर की विंडो से ट्रीज को देखना? डीएमए और इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और वेदर ने तो ऑलरेडी साउंड ट्रैक मांग ही लिया है, तो अगला गाना उसी फॉल ड्राइव मूड के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Burga, burga! ¡La vida es para la burga!
2: ¡Mirchi, burga!
3: हेलो, मैं कौन से विकास बात कर रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: विकास, हाय विकास, कैसे हैं आप?
3: एकदम बढ़िया सर।
4: अच्छा विकास, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अपना प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे डाल ही दिया था, मैंने कस्टमर केयर आपके कॉम पे इसलिए फोन किया, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीमियम सर्विस है आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ना बिल्कुल सीरियस हूँ शादी के लिए।
3: जी सर, जी सर, आपकी बिल्कुल पूरी सहायता होगी। सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप किस तरह की लड़की?
4: देखिए जनरली होता तो यह है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, आजाद ख्याल की होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए लड़की की जहां तक बात है ना, मैं चाहता हूँ बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि बहुत बहुत बोले ना लड़की, मतलब ज्यादा ना बोले लड़के, मतलब खामोशी। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ज्यादा जब बोलते हैं ना आदमी तो ऐसे लगता है यार वही अपनी सुनाई जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई ऐसी लड़की कहां देखें जो कम बोलती हो, और फर्स्ट मुलाकात में तो अंदाजा भी नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो आप इस बात का बहुत ध्यान देना।
3: कम बोलने वाली
4: हमारी फैमिली में भी ये है कि जैसे पापा है वो भी बहुत कम बोलते हैं, मम्मी है बहुत कम बोलती है, उन्होंने भी ये कहा, देखिए छोटी बात पे इतना असर डाल दो कि वो दूर तक जाए, बजाय इसके कि आप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, असर किसी बात का हो नहीं रहा। मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा शक्ल से, शक्ल भगवान की बताई हुई होती है, ऐसी कोई शक्ल में बात नहीं होती, हमारी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है, और बाकी मैं सैलरी का जितनी मेहनत करो इतनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन ये आप थोड़े से देख लीजिए कि थोड़ा सा कम बोलती हुई लड़की हो। इसमें मैं बोल भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए अब मुझे बड़ा अजीब लगता है यार आदमी पे बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा, दूसरों को मौका दे नहीं रहा, कभी कभी उसको अंदाजा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर लड़की देखें ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि आप उससे बात करके, आप बात करके फोन पे अंदाजा हो सकता है ना, कई लोगों से जैसे फोन पे बात करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कितना बोल रहा है कितना नहीं बोल रहा, तो उससे अंदाजा। तो हाँ आप फिर देखिए मैं आपको बताता हूं, बोलने से ये भी तो एनर्जी कितनी निकल रही है आदमी की, अबे आप अपनी एनर्जी बोलने में निकालो, कहीं और पे निकालो, किसी दूसरे काम पे निकालो, देश की प्रगति पे निकालो, बच्चों को पढ़ाई में निकालो, आप बोल बोल बोल बोल के दिमाग फाड़ रहे हो आप दूसरे का। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एक काम करिए, दो चार लड़के देखिए। क्या हुआ सर? ओके
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
9: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
8: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम। Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
15: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
16: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
15: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
16: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
15: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
17: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
18: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
17: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
0: Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
19: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
20: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
21: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
20: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
22: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
23: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
24: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
25: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
26: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: कभी कभी ना हम किसी चीज को मेरे तो ये बजट के बाहर है ऐसा कहकर ही शुरू होने से पहले ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वेकेशन हो, नई कार हो या लाइफ का कोई बड़ा माइलस्टोन, पहले बड़ा नंबर दिखता है और हम कहते हैं कि यार रहने दो, बाद में देख लेंगे। और दोस्तों, घर खरीदने के ड्रीम के साथ भी ना कुछ ऐसा ही होता है। काफी सारे लोग डाउन पेमेंट का बड़ा नंबर देखकर पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन पिक्चर में लो डाउन पेमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। और ऐसे में मॉर्गेज इंश्योरेंस जैसे ऑप्शंस किस तरह से इंक्लूड होते हैं, इन्हें समझना भी जरूरी होता है। और इसीलिए इन्हीं सारे बातों के बारे में हमें और भी बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: Good evening, Mitchell listeners. Your friend Bish from Land Mortgage. If you're driving in traffic right now, dreaming about owning your first home or upgrading to a bigger, listen up, because the home buying game just changed. A lot of buyers think they need to put 20% down and a perfect credit score to get keep in hand. Right now, we are seeing new lower down payment options and flexible credit guidelines designed specifically to get buyers off the sidelines and into homes. Don't let high rates or down payment worry keep you renting. Call us today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 7.125%. 20-year fixed mortgage rate, 7%. 15-year fixed mortgage rate, 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com, and it is lionmtg.com. Remember, listeners, Lion Mortgage has been helping the community for 20-plus years. We offer an array of loan products, conventional loans, DSCR loans, bank statement loans, P&L loans. We also have great rates on jumbo loans. We also offer you one-year buy-downs. You name it, and we have that loan program for you. We offer the most competitive rates in the industry. So friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: Nine Nights, One Divine Spirit.
10: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
9: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
10: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naum Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
9: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
11: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
13: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
14: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी.
15: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
19: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
18: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
20: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
21: 2108069.
22: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
23: अरे कहना क्या चाहते हो?
22: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
16: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
24: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
25: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है. एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले. एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज. हमारी टीम के तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
24: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
26: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
0: दृश्यम देखने का ना एक साइड इफेक्ट तो जरूर है दोस्तों, मतलब नॉर्मल ऑडियंस को भी लगता है कि वो CBI ज्वाइन कर सकती है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और अगर कैरेक्टर ने फोन टेबल पे रखा हो तो कुछ तो गड़बड़ है. कोई अननेसेसरी चाय भी बना रहा हो तो जरूर कोई गड़बड़ है. और अगर कैमरा ने किसी रिसीट पर 2 सेकेंड एक्स्ट्रा क्या फोकस कर लिया तो बस क्लू तो मिल ही गया. और अब दृश्यम द कंक्लूजन थिएटर्स में आ चुकी है तो विजय साळगावकर ने एक बार फिर ऑडियंस का जो डिटेक्टिव मोड है उसे ऑन कर दिया है. और इस फ्रेंचाइजी की मजे की बात ही यही है कि स्क्रीन पर इन्वेस्टिगेशन तो चलती ही है और थिएटर में ऑडियंस की अपनी अलग ही पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलती है. और पता है विजय का ना सबसे डेंजरस टैलेंट मुझे उसकी मेमोरी नहीं, उसकी प्रिपरेशन लगती है. तो बंदा डिटेल्स को इतने अच्छे से अरेंज करता है कि यार हम अपनी ग्रोसरी लिस्ट को लेकर इनसिक्योर फील करने लगते हैं. तो बताओ दोस्तों, थ्रिलर देखते वक्त क्लूज हंट करते हो या दिमाग बंद करके सिर्फ ट्विस्ट का वेट करते हो? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब डिटेक्टिव कैप थोड़ा उतारते हैं, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि अगला गाना आइडेंटिफाई करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं लगने वाली, क्योंकि वो बजेगा सिर्फ आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
6: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख की विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
7: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
9: Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy, or
12: confusion.
5: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao to jano. Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao to jano.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
17: अब मिर्ची खा.
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
20: शाम सरदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम.
21: नवरात्रि की पिक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी है, आउटफिट फाइनल, डांडिया रेडी, प्लेलिस्ट रेडी, लेकिन मिर्ची की पिक्चर में अभी गोल्डन ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस नवरात्रि फेस्टिव में वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लख का हार. और यहाँ ट्विस्ट ये है कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते करते लकी विनर्स के पास चांस है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन नवरात्रि के हर रात में. तो बस अब हीरो वाली एंट्री आपको खुद लेनी पड़ेगी. व्हाट्सएप कीजिए हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244. टाइप कीजिए नवरात्रि और रजिस्टर कीजिए. आप रजिस्टर करने के लिए मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi, SIDDHI. आपको बस टाइप करना है नवरात्रि और इस अनोखे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है जहां आप जीत सकते हो प्रेशियस गोल्ड चेन. और पिक्चर में ज्वेलरी डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो वीरानी ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फेस्टिव स्पेशल ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस्टिव लुक के लिए जो ज्वेलरी दिल को पसंद है वो आप चूज कीजिए, और जो गोल्ड चेन किस्मत में आए वो मिर्ची से जीतिए. मोर डिटेल्स एट viranijewelers.com. और जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची. टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे इंस्टा के DM कर दीजिए. और अब पिक्चर रेडी हो तो बैकग्राउंड स्कोर भी तो चाहिए यार, तो डांडिया उठाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और शाम शानदार में अगला बॉलीवुड बीट पकड़ो ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

अगर मंथ्स का बैकग्राउंड स्कोर होता ना तो अक्टूबर का साउंड ट्रैक डेफिनेटली थोड़ा सिनेमैटिक होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि। और इमेजिन कीजिए कि यार पत्तों के कलर बदल रहे हैं हवा में, वो हल्का सा क्रिस्प फील, कॉफी शॉप्स में पम्पकिन स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, सनसेट थोड़ा जल्दी और कार में एक परफेक्ट बॉलीवुड मेलेडी, तो बस सडनली राउट वन भी ना यश चोपड़ा के सेट जैसा लगता है। और मुझे लगता है कि यार हर सीजन का एक म्यूजिक मूड तो जरूर होता है, मतलब समर में ऐसे रोड ट्रिप वाले गाने, विंटर में कोजी मेलेडीज, और फॉल में वो गाने जो थोड़ा वार्म, थोड़ा रोमांटिक और थोड़ी ड्रीमी फील होते हैं। तो आज बताइए कि आपका अक्टूबर का ऑफिशियल बॉलीवुड साउंड ट्रैक कौन सा गाना होना चाहिए। टेल मी ऑन इंस्टा आवर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और सिर्फ एक ही गाना चूज कर सकते हो। चलिए, लेकिन ये गाना मेरी तरफ से अक्टूबर साउंड ट्रैक में एंट्री मार रहा है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La firma la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Yeah, is that Vishal?
2: जी
3: विशाल, आई एम मूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड.
2: जी सर,
3: आपका फर्स्ट राउंड तो हो गया था, आप उस दिन 4 बजे तक रुके थे ऑफिस, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया था आपसे.
2: यस सर.
3: बाय विशाल, आप नेक्स्ट मंथ तो ज्वाइन करने में कंफर्टेबल है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल सर.
3: अक्टूबर मिड में अगर मैं बोलूं तो.
2: जी.
3: अच्छा विशाल, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड आपका हुआ उन्होंने काफी इम्प्रेस थे आपसे, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ यू हायर यू, आप 5 साल के बाद, मान के चलिए आपने आज ज्वाइन कर ली कंपनी, 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को?
2: सर मैं 5 साल बाद इतनी मतलब कड़ी मेहनत करूंगा आपकी कंपनी में कि मैं आगे जाके खुद ही कंपनी खड़ी कर सकूं.
3: आर वी फूल, आप यहाँ पे आए और लाइक आप ऐसे सोचिए ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं और आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आप उससे पूछे 5 साल के बाद क्या करोगे, और वो कहे कि 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ के अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान हो.
2: नहीं सर. सर मैं आपके साथ, सर मैं 10 साल तक काम करूंगा आपके साथ, जी जान लगा दूंगा सर, और 10 साल तक आप ही के साथ काम करूंगा सर मैं.
3: अगेन अभी फूल, मतलब 10 साल तक आप कोई ग्रोथ ही नहीं कर रहे, आप पड़े में. नहीं आप खुद सोचिए, आपने कंपनी खड़ी करी, आपने एक को हायर किया, आपने उम्मीदें करी कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय है, आपको लगता है ये सही विजन है?
2: सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर.
3: मेरे साथ काम करना चाहते हैं?
2: जी सर, आपकी कंपनी में तरक्की करना चाहता हूँ, जितनी ग्रोथ है आपकी कंपनी में, कहीं नहीं जाऊंगा सर आपको छोड़ के.
3: बिल्कुल पक्का?
2: बिल्कुल सर, पक्की बात है.
3: देख लीजिए
2: जी,
3: 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं.
2: हाँ सर बिल्कुल, जितनी ग्रोथ होगी सर आपकी कंपनी में होगी, आपकी कंपनी में जी जान लगा के कड़ी शिद्दत से मेहनत से दिल से कंपनी की हम ग्रोथ में अपना योगदान,
3: कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देंगे.
2: जी सर.
3: ठीक है, यू आर हायर्ड. विशाल भाई, आप जो आपका नंबर दिया था, पर यार विशाल तुम कितने प्यारे हो यार, तुम कितने मासूम हो. सो नाउ वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, टेल मी नाउ.
2: सर मैं फाड़ दूंगा सर, 5 साल बाद अपनी कंपनी बनाऊंगा मैं.
3: यस.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
8: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलन.
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
11: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स.
12: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा. मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन.
11: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू.
12: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को.
11: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री.
12: रेडियो पार्टनर मिर्ची.
13: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर. कॉल 732-366-6777.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो. 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम. साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन. विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057.
17: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
18: वो तो होगी ही और तामझाम भी होगी दुगना।
15: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dasera Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey 1 p.m. to 8 p.m.
17: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
19: For details call 732-444-8381 or visit dasera.com.
20: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
21: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
20: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
22: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
23: 2108069।
24: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
25: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
24: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
19: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
26: तेरा क्या होगा कालिया?
27: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
26: अब मिर्ची खा।
28: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गोल्डन आर है तो अपडेट भी गोल्ड वाला बनता है, और आज गोल्ड भी थोड़ी एक्स्ट्रा चमक दिखा रहा है। तो स्पॉट गोल्ड अराउंड $4,168 पर ट्रॉय आउंस, विच इज रफली 0.7% अप टुडे। लेकिन आज गोल्ड डिकोडर में गोल्ड की चमक से बात सीधा बॉलीवुड की धुन तक जाने वाली है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि राज जूल्स इस सैटरडे ओक ट्री रोड को बना रहा है एक म्यूजिकल अड्डा विद बॉलीवुड जैमिंग अ म्यूजिकल रोड शो, और इसके बारे में और भी हमें बताएंगी तन्वी। सो हाय तन्वी, हाउ आर यू?
1: हाय सिद्धि, आई एम वेरी वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी अगेन ऑन योर शो। एंड हाँ, मैं बताना चाहूंगी फॉर बॉलीवुड जैमिंग जो हम अक्टूबर 10th को करने वाले हैं यहाँ पर राज जूल्स की पार्किंग लॉट में। एंड फ्रॉम 3 o'clock ऑनवर्ड्स, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि ओक ट्री रोड इज वेरी स्पेशल टू मी, एंड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ शॉपिंग डेस्टिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स आर कल्चर, आर बिजनेस, आर फैमिलीज एंड सो मेनी स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव बिल्ट दिस कम्युनिटी ओवर द इयर्स। इट्स वेरी स्पेशल टू मी एंड आई वुड इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू कम जैम विद अस, सेलिब्रेट विद अस एंड लेट्स हैव फन।
0: वंडरफुल, थैंक यू सो मच तन्वी। और आपके लिए ही नहीं, पूरे न्यू जर्सी के लिए और हमारे जो ओक ट्री, एडिसन, पिस्कैटवे, न्यू ब्रंसविक, जो सारा पूरा एरिया है हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए, ओक ट्री रोड इज वेरी वेरी स्पेशल एंड सो इज राज जूल्स। और ये जो स्पेशल अक्टूबर 10th को जो स्पेशल इवनिंग होने वाली है, जैमिंग आर होने वाला है, उसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है। तो दोस्तों, वंस अगेन नोटेड डाउन, अक्टूबर 10th शाम 5 PM टू 8 PM। वैसे जो शाम की शुरुआत है वो ऑलमोस्ट 3 बजे से ही शुरू होने वाली है, तो यू कैन शो अप देयर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 PM एट ओक ट्री रोड, जहां राज जूल्स का स्टोर है उसी के पार्किंग लॉट में दिस वंडरफुल जैमिंग आर इज गोइंग टू बी देयर। तो जल्दी से आ जाइए वहां पर ऑन सैटरडे। और गोल्ड का अपडेट तो हो गया है, और अब मूड को थोड़ा और म्यूजिकल बनाते हैं, क्योंकि ये जो बॉलीवुड जैमिंग है उससे पहले एक छोटा सा अनप्लग्ड गाना आपको उसी इवनिंग की फील देने के लिए यहाँ पर बजाते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स, किंगडम ऑफ जूल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
3: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep Cow, the Jano.
6: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
7: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
6: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
11: Oh no!
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
16: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
18: 2108069.
6: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
11: अरे कहना क्या चाहते हो,
6: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
12: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
19: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू linemtg.com।
7: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
8: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
9: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitreeusa.org।
10: मुझे नौलखा मंगा तेरे दीवाने।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
14: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
15: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
18: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
18: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
19: लिसनर एम आई, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
10: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
15: नवरात्र की पिक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी है, आउटफिट फाइनल, डांडिया रेडी, प्लेलिस्ट रेडी, लेकिन मिर्ची की पिक्चर में अभी गोल्डन ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस नवरात्रि फेस्टिव में वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते करते लकी विनर्स के पास चांस है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन नवरात्रि के हर रात में। तो बस अब हीरो वाली एंट्री आपको खुद लेनी पड़ेगी। व्हाट्सएप कीजिए हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप कीजिए नवरात्रि और रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो एट @rjmirchisiddhi, SIDDHI। आपको बस टाइप करना है नवरात्रि और इस अनोखे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है, जहां आप जीत सकते हो प्रेशियस गोल्ड चेन। और पिक्चर में ज्वेलरी डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वीरानी ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फेस्टिव स्पेशल ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस्टिव लुक के लिए जो ज्वेलरी दिल को पसंद है वो आप चूज कीजिए, और जो गोल्ड चेन किस्मत में आए वो मिर्ची से जीतिए। मोर डिटेल्स एट virani jewelers.com और जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे इंस्टा के डीएम कर दीजिए। और अब पिक्चर रेडी हो तो बैकग्राउंड स्कोर भी तो चाहिए यार, तो डांडिया उठाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और शाम शानदार में अगला बॉलीवुड बीट पकड़ो ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ये टाइम पास करना भी एक आर्ट होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ लोग 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी एंटरटेनमेंट बना देते हैं। मतलब सोचिए ना, वेटिंग रूम में ग्रोसरी लाइन हो या किसी को पिक करने जाना हो और सडनली 15 मिनट फ्री मिल जाते हैं, तो कोई रील्स खोलता है, कोई पीपल वॉचिंग शुरू करता है, कोई रैंडम ओल्ड फोटोज देखने लगता है, और कुछ लोग तो यार गाड़ी में बैठ कर ही फुल बॉलीवुड कॉन्सर्ट कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है हर इंसान का ना अपना नेचर टाइम पास होता है। तो मुझे जरूर बताइए कि आपका जीरो बजट इंस्टेंट टाइम पास क्या है, म्यूजिक, चाय, पीपल वॉचिंग या बस रील स्क्रोलिंग। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए आज के टाइम पास को थोड़ा क्लास दे देते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड ट्रैक के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirfit Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: दे देना यार मेरे पैसे 10,000 रुपए तूने बहुत
4: अरे यार ऐसे कैसे दे दूं मैं अरे तो मैंने
2: हेलो हेलो भाई साहब
4: आप एक सेकंड होल्ड करो ना मैं आपसे बात करूंगा कितने कह रहा है
3: 5 दे दे भाई
4: 5 पक्की बात है 5 लौट आएगा
3: मैं 5 लौटाऊंगा
4: भाई साहब इसने क्या कही है अभी
2: 5,000 लौटाऊंगा
4: 5,000 लौटाऊंगा ठीक है पक्की बात है ये
3: पक्की बात है पक्की बात है
4: देखो मुझसे गोली मत दियो फोन मत कर पहले बता रहा हूं
3: नहीं नहीं करूंगा
2: अरे मुझे क्या फोन किया
4: अरे मैं आपको बता रहा हूं एक सेकंड रुको देख 5,000 पूरे दे रहा हूं मैं कब तक दे देगा
3: 20 दिन बाद ले लियो चल पैसे
4: भाई साहब कितने दिन कह रहा है ये
2: 20 दिन बोल रहा
4: है 20 दिन कह रहा है ना तू
3: 20 दिन बाद
4: 20 दिन कह रहा है
2: अरे तो मैं क्या करूं
4: भाई साहब जरूरी तो आपसे बात करनी है ये तो बीच में आ गया एक सेकंड होल्ड करो ये ले ये 10 के हैं 500 गिन ले एक बार गिन
3: ठीक है
4: ठीक है
3: 10 नोट दिए
4: भाई साहब कितने नोट दिए इसे
2: 10
4: नोट दिए फोन मत नहीं करेगा तू
3: फोन मत नहीं करूंगा
4: पक्की बात है ना
3: 20 दिन पक्का वापस ले
4: फोन मत करियो
3: यार नीयत थोड़ी खराब है मेरी
4: अब तो तू कर भी नहीं सकता सुन ले क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह है
3: हाँ तो वो तो है ही
4: भाई साहब आप गवाह हो ना आप गवाह हो
3: मेरी नीयत में
2: कोई गवाह
4: नहीं नहीं बात सुनो अगर तूने पैसे ना दिए ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे है ये गवाह है
2: खुद कह रहे हेलो
4: हाँ फोन बंद कर दिया उसने पैसे निकालो अब तुम
2: अरे मैं क्यों निकालू जान ना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो
4: तुमने कहा नहीं किया
2: अरे तुम
4: भाई साहब गवाह बने हो गवाह तुमने खुद कहा 10 नोट दिए
2: खा के थोड़ी दी है
4: ओ हेलो 5,000 पूरे निकलवा लूंगा बता रहा हूँ मैं
2: अरे मैं कहाँ से निकालू तूने मेरे को पैसे
4: दिए जबरदस्ती मत करियो गवाह क्यों बना था तूने कहा 10 नोट दिए
2: हाँ तो मैंने तो बताया था तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो तो मैं बताऊंगा ना
4: उसका तो फोन बन जा रहा तू देगा बता रहा हूँ
2: हेलो
3: अरे भैया
2: कौन
3: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे अरे वो पैसे मांगेगा ना देना मत तुम उसको बिल्कुल भी
2: पैसे मैं क्यों दूंगा तुम दोगे तुमने लिए
3: नहीं नहीं गवाह तो आप है ना देने तो आपके बनते हैं वैसे तो
2: मैं दूंगा भी नहीं मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का
3: यार सारी बात ठीक है पर गवाह क्यों बने बीच में आप
2: पागल वागल हो क्या हेलो
4: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं तू गवाह बना था
2: अबे जो उसने फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहा है मैंने थोड़ी पैसे लिए तेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है
9: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोडायग्नोस्टिक एनेस्थीजिया सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस
8: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा विजिट aimseducation.edu योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं RK ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स RK ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
11: ए हेलो
12: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स
8: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन
12: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू
8: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को
12: एंड द बेस्ट पार्ट इट्स कम्प्लीटली फ्री
8: रेडियो पार्टनर मिर्ची
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लायन मॉर्गेज द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री
14: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस
15: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 दैट इज 732-339-3155
16: चुराने का जरूरत नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स
17: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर your 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
0: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
18: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen
19: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
18: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
19: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
20: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
21: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
22: वो तो होगी ही और ताम झाम भी होगी दुगना।
23: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dasera Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 p.m. to 8 p.m.
24: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
25: For details, call 732-444-8381 or visit dasera.com.
26: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएल।
16: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
17: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
0: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
27: Tera kya hoga kalya?
28: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
27: Ab mirchi kha.
29: Radio Mirchi. It's hot.

दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन। और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है। सैयारा का गाना तुम हो तो, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ। और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते। किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं। और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर खुद अपनी कहानी सोचने लगता है। और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
3: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
4: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
3: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
5: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
9: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
11: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
12: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ.
13: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
14: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
17: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
16: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
17: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
18: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने.
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

नवरात्रि की पिक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी है, आउटफिट फाइनल, डांडिया रेडी, प्लेलिस्ट रेडी, लेकिन मिर्ची की पिक्चर में अभी गोल्डन ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस नवरात्रि फेस्टिव में वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते करते लकी विनर्स के पास चांस है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन नवरात्रि के हर रात में। तो बस अब हीरो वाली एंट्री आपको खुद लेनी पड़ेगी। व्हाट्सएप कीजिए हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप कीजिए नवरात्रि और रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @rjmirchisiddhi SIDDHI। आपको बस टाइप करना है नवरात्रि और इस अनोखे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है जहां आप जीत सकते हो प्रेशियस गोल्ड चेन। और पिक्चर में ज्वेलरी डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वीरानी ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फेस्टिव स्पेशल ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस्टिव लुक के लिए जो ज्वेलरी दिल को पसंद आए वो आप चूज कीजिए, और जो गोल्ड चेन किस्मत में आए वो मिर्ची से जीतिए। मोर डिटेल्स @wiranijewelers.com और जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय

विरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे इंस्टा के डीएम कर दीजिए। और अब पिक्चर रेडी हो तो बैकग्राउंड स्कोर भी तो चाहिए यार, तो डांडिया उठाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और शाम शानदार में अगला बॉलीवुड बीट पकड़ो। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: नवरात एकत स्पिरिट
4: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
3: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांजे 7 कलाक थी।
4: तारीख 18मी ना रोज 8म यज्ञ, 19मी ए 9म यज्ञ अने 25मी ए शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने।
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
11: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
0: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
0: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
13: Ise apni jeb mein rakh le Peter, ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
0: Moral of the story, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
15: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है, और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।